0: हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू हो चुके हैं हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 सितंबर महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 18। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अत और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालू दैनिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अतानी डायलेक्ट न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायलेक्ट न्यूज।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होकर रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। तो दोस्तों ये थी आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

0: और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress, AITC, not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in 3 subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passports Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. The BJP launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan yesterday to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday. The campaign focuses on highlighting his commitment to public service.

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक भक्ति और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत।

0: तो दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz है। तो दोस्तों अब आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनका दम्रोकम छाबे सुत पोल ग लोरी गोला आलोपिनन आर सगोन नुक्ताले रुनम कालो मेंकिनंग मेंजी दो मेंकेन मेंजिना सु कोई जिरदो मेरो लोग बबन ईटानगर ल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर केटी परनायक ब नसामुक्त भारत अभियान आरालोक रिगकुनम डिक्लेमेशन एंड पेंटिंग कंपटीशन रिदक लोक विनर गदम फेलिसिटेशन अमिनम गवर्नर सेक्रेटरीट लो जिगतोकु गवर्नर बु सैम लोदुम गनाम सिग प्राइम मिनिस्टर्स नेशन वाइड ब अग अमराम कैया रुब मधुकुला आत्मान दोनम तनम द्रग आत्मान नगन अगम दंग कोनम तोमा बजुका अमला रिक कोलोक सिग लोदुम गनाम गो ओक जन आंदोलन एम नरु मग अब्दुकुला अग नाम रूम तुम नाम लोक कर रेले कुला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओक कम्युनिटी नरु मोकलो ड्रग तीन दोनगो कारम चिन नुने यो ब्रिला चिन आखिन आखिन रुतुम मेंतुम नाम सगम रुरु लजिका ओक नाम लो ड्रग तिला को आत्मा ने दंगने को ने तीन गो दोनों गो कार कोम नाम रूम तुम तीन न्यूम कुमा नाम रूम तुम मोक नाम बे रुदो को एक लगा बे योल मोक लो एक गो रुन गो कारम चिन अगम आखिन आखिन अवेयरनेस जिन नम दिंची बे रुरु लजिका मला लो दुम सगो बु मेंतो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2026 मरोग लोक रिरप का पूरा कंट्री सगोंग वही कंट्री आरासो का नरु मोकलो मरोग लो हम दिनची जाब लोदुम का कैंपेन से गिम स्वच्छता में सेवक स्वच्छ भारत विकसित भारत आरालो का रिग दूला सिंगे का कैंपेन सगो अग रगो दुगो लोक का रिले कुला पब्लिक प्लेस नरु हम दरग ब अनम अमेन लोक का अतुला लोदुम गतु स्वच्छ पाठशाला फॉर युवा स्वच्छता सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर जन भागीदारी ओक स्वच्छता से समृद्धि आरालोक लोदुम गतु मरो चीफ मिनिस्टर निर्मल पेमा खांडू चिन मालो थारेन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर लो स्वच्छता पाठशाला एम बी मोकोक जितु बी मोकोक दूला मेनला स्कूल पोरी ना आओगा दिन दोनों अलग नाम ओक अलग रूम एम लोक सपादरक नाम अगर एम गर्रब गले कुला स्कूल ऑफिस ओक नो योल अगर गर दूधे ओगो क्लीनलीने सिगम अलग हेविड बा अतु कुला योम रिलाचिन सपाला अलग दू कोर को अलग योल इंदु के दूधे अगम रिनुम एम दिंची बा रिरू लजुका एम लाबु मोकोग दूला मेंकेल तो एजुकेशन ओक टूरिज्म बेलदू कुन मिनिस्टर पी डी सोना ब मरो दोई लोम लगा ब वर्कशॉप एस ई ई लर्निंग एम ने तुपटेन सर डुफ्लिंग तावांग लो मोकोक जिका सिगम डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड एडियामिक एफियर एम तुपटेन सर डुफ्लिंग फाउंडेशन तावांग लेकिन दूला लो दूंग तो सगो एजुकेटर गद सोशल इमोशन एंड एथनिक लोकल लर्निंग एम रिग दो एमला मेंकिन जितु मरो पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल पूरा पोल पिकेन गोब लोदुम तनम सेवा मेरा योगदान 2026 ओक स्वच्छता ही सेवा 2026 कैंपेन मरो गलोलो पासीघाट म्युनिसिपल ऑफिस कैंप गुमिन नगर पासीघाट लो रिगका सेवा मेरा योगदान 2026 अरासोगो पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड काउंसलर म्युनिसिपल ऑफिस ऑफिसर्स एनजीओस एसडीएस यूथ ग्रुप मार्केट एसोसिएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकल रेसिडेंशियल नरुलो क्लीनलीनेस सपादरक अनम ओक नरु मोकलो सिम सिवम लरिगला मोकों काकिन ब अनम अवेयरनेस एम सगो लो मालो लो सगो पूरा पोलो पिकेन लो लोदुम तरना हमला मेंबर जितु तन गद मेंके नगम दनु आकाशवाणी ईटानगर लोक का तपादु சோக் போல்க ஆறுன சம்ஜிகோல அலோக்கிங்க நான் அலோ தலோ டெலிகம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கன்சியூமர் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் அருணாச்சல் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடி ஆஃப் நாம்சாயிலோ லோதும் கத்தது சோகோ யோ யோ மோக்கலோ டெலி கம்யூனிகேஷன் இஜலோவ கனெக்டிவிட்டி காமாதுவது ஒக்லகாப ஒக்க கபு கபு இந்த கின அவாலோக்க அவேர்னஸ் சம்ஜிதுலா லோதும் கத்துறந்தாங்கிட்டு மரோ மகாராஷ்டிராலோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா கோஆர்டினேட்டர் மீட் கம் செவன்த் ரிவ்யூ மீட்டிங் டாக் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்டர் டிபிடி ஸ்டார்ட் காலேஜ் ப்ரோக்ராம் லோக்க லோதும் தக்லோ ஜேஎன்சி பாசிகாத் லோக்க பெக்கல்டி இதுவும் அணிகோ சகோ ப்ரோக்ராம் லோ ரெலிங் மீங்கத்தும் சகோ சமுங்கோலா அக்கென் ப்ராஜெக்ட் ரிங்கம் குனம் ஒக்க போஸ்டர் பிரஜென்ட் டேஷன் நரு சிகம் ரிவ்யூ அம் ரிதுலா லோதும் து மரோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் டி அடிக்ஷன் சொசைட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் நேஷனல் ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லியை லெக்கெந்துலா லோதும் கக்கா சகோ டாக்டர் நர்ஸ் ஆஃபீஸர் ஒக்க கிளினிக்கல் சைக்கலாஜிஸ்ட் கதம் தோனி லோம் ட்ரைனிங் அம் இருக்குதோவ ருத்து சகோ ட்ரைனிங் ரிதாகலோ ட்ரக்ஸ் மேனேஜ் நசா முக்த பாரத் அபியான் அராலோக்க இருக்கிற சிகிம் ட்ரைனிங் சிகிம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் சொக்க சகோ அவும் பேசுகோபுரிற நஹர்லகன் பாசிகா தொக்க நம் சைலோ சொக ட்ரீட்மெண்ட் ரிதாகலோ ட்ரக் டி அடிக்டெட்ன ஒக்க ஹெல்த் ஒர்க்கர் கதச்சின் ட்ரக்ஸ் லானக்க காதுக்கு சிங்கதம் யோம்ப ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கேந்தோனது ஒக்க அராலோக்க ட்ரைனிங் இருக்கிற எம்னா மெங்கெஞ்சித்தும் மெட்ரலாஜிக்கல் சென்டர் இட்டாநகர எல்லோ எலார்டம் வெஸ்ட் கமிங் ஈஸ்ட் கமிங் பப்பும் பாரே ஈஸ்ட் சியாங் லோவர் டிபங் வேலி அஞ்சோ ஒக்க லோஹித் டிஸ்ட்ரிக்ட் காத்தம் தூல சொகோ மோகோ கத சொகோ நிதோ கொதே தோகும் தோறக்க அச்சிப ரிப தேதோ நரு அல்ப என்ஸ் காசில தூரு தொலாக்க அம்லா மேங்கப்ளத்து க சிறுக கலோ மிங்கினாகும தானகத்த கஜு தீன்ச்சினாகும் தலாஜு
2: HIV bemar higum aluba hensla yenam higi naru lok dinsna
3: HIV bemar higi yo lok nyomi hitakko amyomne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hik lok ok anna HIV gayomne aki lok awam se yogla tu
2: amge mu batoka amum badubam hik lok alakiya ya hik lok gombagom ya hik lok dobam te bam hik lok ok taru peak lok HIV higi nyong madona ka
3: HIV test ika hila yeru tolaka hengor bolo nomne moplasin ilado nok gunam hunam emsin alu ba gupu hipulasin ilado
2: HIV higum bosyoka alu baden hen lajuka test kotka ok HIV gan namne arik map juka higi arik sa kama
3: HIV ga lagu laga higi ne alu ba hen nam laga ba national AIDS helpline 1097 number hobo call ru tolaka
2: ஹக்ன தீன்ஸ் நாபாஹிகும் பூமின் ஹொயின் லகாப அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி DHS நஹர்லகன் பேல லொக்க ஜிலேந்து தகப்சா ஆகோம்கோ HIV பேமார் ஹிகும் அல்லு பஹென்ஸ்லா ஏனம் ஹிகி நரு லோக் தீன்ஸ்னா
3: HIV பேமார் ஹிகி யோ லோக் நியோமின் ஹிதாக்கோ அம்யோம்னே HIV பேமார் கன் லோக் இலாலா HIV கன் நாம்னே யுபம் தோபம் ஹிலா பேஜி சிரிஞ்ச் நிர்பம் ஹிக் லோக்க ஒக்க அன்ன HIV கையம்னே அகி லோக்க அவம் சே நியோகலா தூ
2: அம்கே மு பதோகா அம்மும் பதுபம் ஹிக் லோக்க அலக்யா யா ஹிக் லோக்க கொம்பகம் யா ஹிக் லோக்க தோபம் தேபம் ஹிக் லோக்க ஒக்க தாரு பீக் லோக்க HIV ஹிகி நியோங் மாதோனக
3: HIV டெஸ்ட் இகா ஹிலா யெரு தோலாகா ஹெங்கோர் போலோ நோம்னே மொக்லாசின் இலாதோ நோக்க குணம் ஹுனம் அம்சின் அல்லு ப குரூப் ஹிக்லாசின் இலாதோ
2: HIV ही गुंबोसियोका अल्लबदन हेन लाजुका टेस्ट कोतका ओक HIV गन नमने अरिक माप जुका हिगी अरिक्सा कामा
3: HIV ग लगु लगा हिगेमने अल्लुब हेन नम लगाब नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 नंबर होग कॉल रु तोलाका
2: हक नदीम्स ना बाहिगुम गुमिन होइन लगाब अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नहलगन पेला लोक जिलेंतु

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार और स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम सुबह सवेरे में। अक्सर हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, किसी का मैसेज, कोई ईमेल या सोशल मीडिया का कोई अपडेट।

थोड़ा ठहरने दीजिए, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए। चिड़ियाओं की चहकाहट, पत्तों की सरसराहट और अपने भीतर की शांति को। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो मन के सारे बिखरे हुए ख्यालों को एक जगह समेट दे।

गीत की इस मधुर धुन के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सुबह सवेरे में। दोस्तों, आमतौर पर जब हम योगा की बात करते हैं तो लोग वही पुराने नियम या आसनों की लंबी लिस्ट उलझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसे हम दिन भर नजरअंदाज करते हैं, हमारा पोस्चर यानी शरीर की स्थिति। हम दिन भर या तो झुक कर चलते हैं या लंबे वक्त तक किसी स्क्रीन के आगे गर्दन झुकाकर बैठे रहते हैं। इसका सीधा असर हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। अगर आप इस वक्त खड़े हैं या बैठे हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपने दोनों कंधों को कानों की तरफ थोड़ा सा ऊपर कीजिए, फिर पीछे की तरफ घुमाते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी छाती को खुला महसूस कीजिए। जब आपका पोस्चर ठीक होता है तो ऑक्सीजन का बहाव पूरे शरीर में बेहतर होने लगता है। सुबह के वक्त सिर्फ 5 मिनट तदासना में खड़े होना, अपने दोनों हाथों पर दोनों हाथों को सर के ऊपर तान कर पंजों के बल शरीर को ऊपर खींचना आपकी हर एक वर्टेब्रा यानी मनकी को स्ट्रेच करता है। ये आसन आपको दिन भर की थकान और कमर के दर्द से बचा सकता है। इसे ताजगी के साथ आगे बढ़ते हैं संगीत के अगली पड़ाव की तरफ।

0: I know you would have enjoyed yourself agar tum dinner pe jati. You throw me lotti from Hoshiarpur.
1: Gurdaspur.
0: Jo bhi yaar.
2: सुनोगे इस सफर के बाद अब आते हैं हमारी शारीरिक हरकत यानी बॉडी मैकेनिक्स पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना या बहुत तेज दौड़ना है, लेकिन उम्र के साथ सबसे पहले जो चीज काम आती है वो है हमारी मोबिलिटी यानी जोड़ों का खुलापन। अगर हमारे हिप्स और एंकल्स टाइट हैं तो आगे चलकर घुटनों में दर्द होना तय है। इसलिए सुबह के वक्त सिर्फ 10 मिनट जॉइंट मोबिलिटी को दीजिए। कोशिश कीजिए कि सुबह के वक्त एक बार पूरे डीप स्क्वाट में, जिसे हम आम बोलचाल में देसी बैठक या उड बैठ कहते हैं, कम से कम 1 से 2 मिनट बैठने का अभ्यास करें। शुरुआत में अगर संतुलन ना बने तो किसी दीवार या दरवाजे का सहारा ले सकते हैं। ये एक हरकत आपकी पेल्विक जॉइंट्स, एंकल्स और लोअर बैक का के तनाव को पूरी तरह रिलीज कर देती है। शरीर को मशीन की तरह मत चलाइए, उसे फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट दीजिए। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा जो आपके

संगीत के बाद अब आते हैं स्वास्थ्य की उस बुनियादी बात पर जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारी सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक घड़ी। अक्सर लोग सुबह उठते ही पहला काम करते हैं बंद कमरे में रहना और धूप से बचना। साइंस ये साफ कहती है कि आंखों और त्वचा पर सुबह की पहली धूप का पड़ना बेहद जरूरी है। जब सुबह की धूप आपकी रेटिनल सेल्स पर पड़ती है बिना किसी चश्मे की, तो मस्तिष्क में कोर्टिसोल का नेचुरल रिदम सेट होता है जो आपको अलर्ट बनाता है और रात को ठीक वक्त पर नींद आने में मदद करता है। दूसरी बात, खाना चबाने का ढंग। हम में से ज्यादातर लोग जल्दबाजी में नाश्ता बस निगलते हैं। जब तक आप अपने भोजन को लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल देते, आपका पाचन तंत्र उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हर निवाले को ठहर कर खाइए। ये छोटे छोटे नियम ही लंबे वक्त तक शरीर को रोग मुक्त रखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सुबह सवेरे के आज के इस दौर को यही विराम देते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी ईटानगर का

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आप पता नहीं बोली में समाचार, और अब वक्त हो चला है आपके अपने सुबह के खास सिलसिले का यानी मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। सुबह की धूप दालनों पर फैल चुकी है और अगर आप अपने आंगन में

संगीत सुनेंगे और आज के अहम समाचारों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास के साथ। दोस्तों, आज यानी 18 सितंबर के दिन दुनिया में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने अपना असर छोड़ा? तो पहली घटना साल 1851 की है, जब अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का पहला एडिशन प्रकाशित

महासचिव डाग हमर्सडॉल की कोंगो में शांति मिशन के दौरान एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और साल 1998 में इंटरनेट पर डोमेन नेम्स और एड्रेसेस को नियमित करने वाले संस्था ICANN की स्थापना हुई थी, जिसने आगे चलकर हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन की दशा तय की। तो दोस्तों, इतिहास की ये पल हमें याद दिलाते हैं कि सुविधाएं या व्यवस्थाएं आज हम

गीतों की बात वापस स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। अब नजर डालते हैं हमारे अपने देश भारत के इतिहास पर, जहां 18 सितंबर के दिन का अपना एक अलग महत्व है। पहली अहम घटना है साल 1948 की, जब ऑपरेशन पोलो औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था। हैदराबाद के निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद रियासत का औपचारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हुआ। यह अखंड भारत के निर्माण का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। साल 1883 को स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा का जन्म अमृतसर में हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में एक अहम क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। साल 1803 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी की श्री जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र पर कब्जा किया था, जिसके बाद इस क्षेत्र के प्रशासनिक दौर में बड़े बदलाव आए थे। साल 2016 में जो हमारी सुरक्षा और बलिदान से जुड़ी है, आज ही के दिन जम्मू और कश्मीर के उरी में सैनिक कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे वीर जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखों के नाम नहीं है, ये उन संघर्षों और बलिदानों की कहानी है जिन पर आज हमारा वर्तमान खड़ा है। जब भी हम इन तारीखों को याद करते हैं, एक आदर और जिम्मेदारी का एहसास होता है। चलिए संगीत का एक और दौर, फिर बात करेंगे आज के समाचारों पर।

सुरों के सुहाने सफर के बाद अब आते हैं हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश की ताजा खबरों पर। द अरुणाचल टाइम्स से लिए ताजा खबरों के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। तो पहले खबर ये है, एक महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कानून की और से ऐसे गंभीर अपराधों के खिलाफ ये एक कड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आई है। डाक विभाग के एक कर्मी को 39 लाख रुपए के गबन के आरोप में हिरासत में लिया गया है। विभागीय कोषों की हेराफेरी के इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। राज्य में सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा यानी एज रिलैक्सेशन को लेकर जहां आवेदक और विभिन्न संगठन आयु सीमा में छूट देने की मुद्दे पर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इधर एक सिविल फोरम ने सीबीआई द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने की निंदा की है और इस कार्रवाई को स्पष्ट रूप से हरासमेंट यानी परेशान करने का प्रयास करार दिया है। और अंत में मेबू सब डिवीजन से आई एक चिंताजनक खबर, सियांग नदी के कटाव ने वहां गंभीर रूप ले लिया है। तेजी से हो रहे कटाव के चलते जमीनें और आसपास के स्थानीय इलाके प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन से इस पर तत्काल बचाव के कदम उठाने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे आज सुबह के प्रमुख समाचार। समय हो चला है आपको एक आखिरी खूबसूरत गीत के साथ छोड़ने का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन बोली में समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब वक्त हो चला है एक ऐसे सफर का जहां वक्त थोड़ा पीछे मुड़कर मुस्कुराता है। आपके अपने कार्यक्रम जी हां सदबहार। पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उनका कोई दौर पुराना नहीं होता। हम बदल जाते हैं, दौर बदल जाते हैं, लेकिन वो धुने वो अल्फाज हमेशा दिल के किसी कोने में ठहरे रहते हैं। कभी किसी पुराने दरवाजे की आहट, कभी मिट्टी की खुशबू और कभी रेडियो से आती हुई मुकेश या लता दीदी की आवाज एक पल में बीते हुए सालों को सामने ला खड़ा करती है। अगर आप इस वक्त अपने आंगन में बैठे हैं या घर के किसी कोने में चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो चलिए दिल के तारों को थोड़ा सा छेड़ते हैं इस पहले मधुर गीत के साथ।

तो सो पुराने नगमों के इस मिठास के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सदाबहार में। संगीत के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में मौसम का मिजाज जानना बेहद जरूरी होता है, खासकर हमारे इस पहाड़ी राज्य में जहां मौसम पल भर में करवट लेता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ईटानगर द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी ईटानगर और आसपास के इलाकों में आज आकाश में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटों में स्थानीय स्तर पर हल्की सी मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जिससे सुबह के वक्त हवा में नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 80-90% के आसपास बनी हुई है। आज ईटानगर का अधिकतम तापमान लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोपहर या शाम के वक्त शहर और

0: आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, आप ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
4: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
2: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि

0: 60% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दो दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार IT, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, JEE मेन, UGC नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। CCTV की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही CCTV अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए UGC नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arupra-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
5: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent members from the Lok Sabha include Tejaswi Surya, Nishigan Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From the Rajya Sabha, Harshvardhan Shingla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy are among the members of the committee. The committee is required to submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. Vishnu P.S. for Akashvani News, Delhi.
3: The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website, https://ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on the September 9th and 10th of this month at 454 centers across 272 cities in the country. The agency had earlier issued a notice on August 16, 2026 regarding the conduct of the test. Candidates who appeared in the examination can now log in to the registration portal using their application number and password to view the final answer keys of their respective subjects. The NTA has advised all candidates to visit the official UGC NET website regularly for the latest updates related to the examination. For any clarification, candidates may contact the NTA help desk through the contact details provided on the website. The Finance Ministry will organize a two-day conference on financing India's journey towards Vikasit Bharat in New Delhi, beginning today. The ministry said that the conference will be held for finance ministers and finance secretaries of the states and union territories. Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with several chief ministers and finance ministers from the states, will be present during the conference. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public life. His journey has been defined by the mantra of service to the nation through public service and continued dedication, which remains steadfast even today. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of a developed India by 2047. This commitment, through inclusive development and social empowerment, is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the end of Naxalism.
6: In Chhattisgarh's Bastar region, following the end of Nakhalism, the sound of school bells is once again being heard in place of gunfire. Security camps in the Bastar region are being transformed into modern public service centers named Shaheed Veer Gundadhur Sevadera. Bastar Olympics and Bastar

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलोंग से समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz से। और अब वक्त हो चला है आपके अपने विशिष्ट शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम हेलो ईटानगर का। पता है दोस्तों, अक्सर जब हम मेहनत की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है खेतों में पसीना बहाना, दफ्तर में घंटों स्क्रीन के सामने बैठना या परिवार के लिए नए नए सपने देखना। मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता, मेहनत का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन क्या उस मेहनत का मोल हमेशा बराबर लगाया जाता है? आज का दिन इसी बात पर ठहर कर सोचने का है। आज 18 सितंबर है और पूरी दुनिया में आज के दिन को इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने साल 2020 में इस दिन की शुरुआत की थी ताकि ये याद दिलाई जा सके कि समान काम के लिए समान सम्मान और समान मेहनतना मिलना किसी की मर्जी नहीं बल्कि एक बुनियादी अधिकार है। तो चलिए इस गंभीर विषय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इस खूबसूरत सुबह को और भी खूबसूरत बना दे।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: शादी कर सकते हैं. शादी कर सकते हैं.
3: गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो ईटानगर में. दोस्तों, अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले लगभग 20% कम वेतन मिलता है. इस अंतर को हम जेंडर पे गैप कहते हैं और ये फर्क किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. ये कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर तक हर जगह देखने को मिलता है. भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 39D में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम का समान वेतन होना चाहिए. इसके अलावा 1976 का इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी इसी नियम को कानूनी रूप से लागू करता है. लेकिन कानून अपनी जगह है और जमीनी हकीकत अपनी जगह. अक्सर सामाजिक धारणाएं परिवार की जिम्मेदारियों का अकेला बोझ और वर्कप्लेसेस पर बराबर मौका न मिलने इस पे गैप को बढ़ा देता है. हमारी पहाड़ी इलाकों में देखिए, सुबह सबसे पहले उठकर खेतीबाड़ी संभालने से लेकर बाजार में दुकान चलाने तक महिलाएं बराबरी की हिस्सेदारी निभाती है. पर जब उनकी आर्थिक स्थिति या स्वतंत्रता की बात आती है तो उनका श्रम अक्सर अनपेड केयर वर्क यानी बिना किसी दम के घरेलू काम बनकर रह जाता है. समान वेतन का मतलब सिर्फ जेब में आने वाले पैसे का बराबर होना नहीं है. इसका सीधा ताल्लुक आत्मसम्मान, आर्थिक आजादी और सामाजिक सुरक्षा से है. तो इसी विचार के साथ आइए सुनते हैं एक और मधुर नगमा.

सुरों के सुहाने सफर के बाद हम लौटते हैं आज के विषय पर। अक्सर लोग सोचते हैं कि बराबरी की बात करना केवल पॉलिसीज या एचआर डिपार्टमेंट्स का काम है, लेकिन वास्तव में वर्कप्लेस फेयरनेस की शुरुआत होती है हमारी सोच से। एक स्वास्थ्य कार्यस्थल वही होता है जहां टैलेंट, दक्षता और समय को आंका जाए इस बात को नहीं कि काम करने वाला कौन है। जब किसी संस्था में समान मेहनताने का नियम लागू होता है तो वहां से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एक ट्रांसपेरेंट ईमानदार माहौल बनता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक सैलरी स्ट्रक्चर्स खुले और निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक भेदभाव को पहचानना मुश्किल रहता है। इसके साथ ही लीडरशिप पोजीशन पर महिलाओं को बराबर के मौके देना, मैटरनिटी या केयर गिविंग लीव्स के बाद उनके करियर प्रोग्रेशन को बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ाना, ये सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज के अहम हिस्से हैं। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी एक मजबूत समाज का हिस्सा बने तो उन्हें बचपन से ही ये सिखाना होगा कि हर श्रमिक का श्रम आधार के योग्य है। तो चलिए इसी बीच संगीत का एक और खूबसूरत मोड़ लेते हैं।

दोस्तों, गीतों और बातों के इस दौर के बाद समय हो चला है हेरो ईटानगर के आज के इस विषय को समेटने का। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हमें यही संदेश देता है कि प्रगति तभी सच्ची कहलाएगी जब उसमें सबका हिस्सा बराबर हो। चाहे आप किसी बड़े संस्थान में ऑफिसर हो, किसी छोटे व्यापार में मालिक हो, या अपने घर के फैसलों के साझेदार, अपने आसपास निष्पक्षता और आधार का माहौल बनाए। हर किसी की मेहनत को वो स्थान दीजिए जिसके वो हकदार है। उम्मीद है आज का ये शैक्षणिक सफर आपके लिए गौर करने योग्य रहा होगा। ऐसे ही रोचक और जानकारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता

0: से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक की सरायकालेखा शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, उड़ीसा, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अर्केल। The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arupra-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shundipan Dashgupta.

वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। मैं हूं आपकी अपनी साथी आरजे याजू और अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है फिल्मों, संगीत और उन अनकहे कहानियों की तरफ जिनका इंतजार हम सभी को रहता है। ये वक्त है हमारे सबसे चुलबुले और रंगीन सिलसिले का फिल्मी गपशप। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच अगर सिनेमा की गर्मा गर्म बातें ना हो तो दिन थोड़ा अधूरा सा लगता है। पर्दे पर क्या चल रहा है, ओटीटी के नए सिलसिले क्या कह रहे हैं और हमारे सितारों की जिंदगी में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब बातें आपसे करेंगे ठीक वैसे ही जैसे दो

पुराने दोस्त आमने सामने बैठकर चाय के कप के साथ करते हैं। और हाँ, बातों की इस मीठे दौर को और मजेदार बनाने के लिए पूरे शानदार नगमे आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस आराम से बैठ जाइए और सुनते हैं आज का पहला गाना।

कार्यक्रम फिल्मी कपशप। अगर आपको फैंटेसी ट्रेलर देखने से शौकीन है तो कल ही सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आने वाली नई फिल्म बान का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर में एक फॉरबिडन फॉरेस्ट, एक गुप्त जंगल और उससे जुड़ी आस्थाओं की कहानी दिखाई गई है, जहां एक तरफ विकास और मॉडर्न मशीनरी है तो दूसरी तरफ जंगल की परंपराएं। सिद्धार्थ इसमें एक बिल्कुल अलग रक्त अवतार में नजर आ रहे हैं। तमन्ना ने बताया कि इस फिल्म के एक गीत छाती मैया की शूटिंग के दौरान वो इतने भावुक हो गई थी कि उनके आंसू छलक पड़े।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर सिलसिला जारी है फिल्मी गपशप का। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर सिनेमा प्रेमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए वेटरन एक्टर आनंद नाग के नाम की घोषणा हो चुकी है। 5 दशकों से ज्यादा का उनका सफर, चाहे वो कन्नड़ सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म हो, श्याम बेनेगल की अंकुर हो या दूरदर्शन का हमारा सबका पसंदीदा सीरियल मालगुड़ी देश। आनंद नाग जी की अधिकारी में हमेशा एक आम इंसान की सादगी नजर आती है। 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। उन जैसा शानदार कलाकार को ये सम्मान मिलना दरअसल पूरे देश के सिनेमा का सम्मान है। इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला।

दोस्तों अब बात करते हैं थिएटर की हंगामे की। इस वक्त सिनेमा हॉलों में दो अलग अलग किस्म के सिनेमा की चर्चा जुबान पर है। एक तरफ है बड़े पर्दे पर आई मिर्जापुर द मूवी, जिसमें अली फैजल और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी ने थिएटर्स में जबरदस्त धूम मचा रखी है। फिल्म लगभग 200 करोड़ क्लब के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में कहा कि मेकर्स बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का कोई बेमतलब दबाव नहीं बना रहे, बल्कि कंटेंट को आगे रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी फिल्म ने इतना बड़ा धमाका किया है कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। फिल्म हनुमान अंश सिर्फ 60 लाख जोड़कर तीन महिलाओं ने इसे प्रोड्यूस किया था और आज ये फिल्म लगभग 300 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इस पर कहा कि बजट कभी फिल्म की सोच और उसकी रूह को तय नहीं करता। सच में जब कंटेंट सच्चा हो तो दर्शक उसे सराखों पर बिताते हैं। तो चलिए इसी सिनेमैटिक मिजाज के साथ सुनते हैं अगला गाना।

0: 1000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: संगीत के सुहाने सिलसिले के बाद अब आते हैं हमारी ड्राइंग रूम और मोबाइल स्क्रीन की दुनिया पर यानी ओटीटी अपडेट्स। लास्ट वीक नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू की नई फिल्म गांधारी ट्रेंडिंग चार्ट्स पे टॉप पर चल रही है। भले ही क्रिटिक्स के रिव्यूज मिले जुले रहे पर व्यूअर्स एक्शन और इमोशंस के तालमेल को खूब स्ट्रीम कर रहे हैं। तापसी ने सोशल मीडिया पर दर्शकों को शुक्रिया भी कहा और वही कॉमेडी लवर्स के लिए एक नई खुशखबरी है। कपिल शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि उनके मशहूर स्ट्रीमिंग शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन बेहद जल्द आने वाला है, यानी वीकेंड की हंसी का इंतजाम तो बिल्कुल तैयार है। आप भी मुस्कुराइए और सुनते हैं ये अगला नगमा।

गीत के बाद अब हम बात उन मुद्दों की करते हैं जिन्होंने फिल्म नगरी में चर्चा छेड़ रखी है। पहली बड़ा बदलाव है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, उसमें एक बड़ा रीशफल हुआ है, जहां 18 नए मेंबर्स को शामिल किए गए हैं, जिसमें प्रीति जिंटा और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आमतौर पर सेंसरशिप और क्रिएटिव फ्रीडम के बीच की बहस हमेशा गर्म रहती है। आप देखना होगा कि नए पैनल के आने से फिल्मों की सर्टिफिकेशन प्रोसेस में कितना नया नजरिया जुड़ता है। वहीं संगीत की गलियों से एक और कॉन्ट्रोवर्सी उभर कर आई है। म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक और उनके परिवार पर ट्रोल्स के निशाने की बात उन्होंने एक बड़ी वार्निंग दी है। उनका कहना है कि पुराने गानों के क्रेडिट और रॉयल्टी को लेकर आर्टिस्ट के बीच बहस को आम लोग सोशल मीडिया पर बदसूरत मोड़ दे रहे हैं। कला और सम्मान हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। तो इसी बीच चलिए तनाव को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और सुनते हैं ये अगला सुरीला नगमा।

आज सिनेमा हॉलों के लिए नई रिलीजेस का दिन है। आज स्क्रीन पर नानी की एक्शन मूवी ब्लडी रोमियो और विश्वाक सेन की फिल्म कल्ट आने को तैयार है। तो अगर आप वीकेंड पर मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन का प्लान बना रहे हैं तो एडवांस बुकिंग जरूर चेक कीजिए। फिल्मों का ये मेला यूं ही सजता रहेगा और हम हर नए किस्से के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा तो हमें जरूर बताइए मैसेज करके। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, पर जाने से पहले सुनते जाइए आज का ये आखिरी गाना और आप जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर UFM 103.1 MHz पर। दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार और मैं आपको वापस मिलूंगी ठीक 10 मिनट बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नाम।

0: होंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
1: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक के सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigam and Rajinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arupuroy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The Commission will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search and seizure operations at 7 locations across Jharkhand and Odisha in connection with the Jharkhand State Cooperative

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार और अब वक्त आ गया है दिन के उस सबसे प्यारे हिस्से का जिसका इंतजार सिर्फ आपको नहीं हमें भी बराबर रहता है, आपका अपना आपकी पसंद का कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये दूरियां को मिला देता है। हम यहाँ स्टूडियो के माइक के सामने हैं और आप पहाड़ों की घाटियों पर पार करके आसाम के मैदानों से या झारखंड के शहरों से हमें सुन रहे हैं। एक मैसेज और आपकी पसंद का एक गीत हम सबको एक ही तार में बांध देता है। आज के इस पहाड़ में भी ढेरों संदेश हम तक पहुंचे हैं, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आपके संगीत भरे सिलसिले का। पहला गीत चुना है चाईबासा झारखंड से हमारे श्रोता शिवा गोप और उनके परिवार ने। उनकी फरमाइश पर

बुकखात आसाम से ओर्की गोस्वामी हमें सुन रहे हैं और उन्होंने याद किया है अपनी दोस्ती के उन अनमोल लम्हों को। उनकी पसंद पर फिल्म याराना का ये अमर नगमा, तेरा जैसा यार कहां।

दोस्तों बोकाखात से ही अगला मैसेज आया है विदिशा गोस्वामी से। उनकी गुजारिश है फिल्म बदलापुर का ये दर्द भरा गहरा नगमा।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो निर्माण। आप चलते हैं अगले रिक्वेस्ट की तरफ। लालू कसाम से सत्यजीत चुतिया हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि ये अगला गीत उनके दिल के बहुत करीब है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से जाने क्या चाहे मन।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों अगली फरमाइश गोलाघाट आसाम के निवासी रोमेश रोनू और लकी ने मिलकर भेजी है ये अगले गीत। फिल्म गर्व से ये रोमांटिक गीत हम तुमको निकाहोंगे।

असम से सुनीता बसुपतारी का संदेश हमें मिला है। उनकी फरमाइश पर पेश है संगीत की एक पुरानी लेकिन बेहतरीन धुन, फिल्म गुमराह से तेरे प्यार को सलाम ओ सनम।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, गोपुर आसाम से सुजिता बसुमतारी हमें लिखती है कि वो ये गीत अपने सभी दोस्तों को समर्पित करना चाहती है। सुजिता और उनके दोस्तों के नाम फिल्म बलमा का ये प्यारा सा नगमा अगर जिंदगी हो।

दोस्तों लंकम सम से टेंशन क्रो और सरलो एक क्रो का अगला संदेश हमें मिला है उनके पसंद पर आइए सुनते हैं मन को सुकून देने वाला ये गीत

दोस्तों आज 18 सितंबर है यानी वर्ल्ड बेम्बू डे। हमारे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी कला और रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसी खास मौके को ध्यान में रखते हुए सरिहाजन कर्बी आंगलोंग असम से जोगेंद्र सोनाली।

और धर्मगिरी ने एक बेहद रोचक फरमाइश भेजी है। उन्होंने ये गीत अपने सभी दोस्तों और आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं के नाम समर्पित किया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म मर्द का ये सदा रंगीन गीत।

लगाए बैठे हम तो तंबू में, तंबू लंबू में, लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे हम तो तंबू में बंबू।

दोस्तों चलिए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक और प्यारा सा खत शामिल करते हैं जो हमें मिला है हेलम असम से। ज्योति सुरीन हमें सुन रही है और उन्होंने फरमाइश भेजी है फिल्म केदारनाथ के इस बेहद मीठे और झूमते हुए गीत की।

दोस्तों, खत और फरमाइशों की लंबी लिस्ट अभी भी हमारे साथ है, लेकिन वक्त आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। समय की सीमा के चलते आज हम बाकी श्रोताओं के गीत शामिल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें बेहद खेद है। तो आपसे निवेदन है कि जिनकी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग रह गई है, वे कल फिर से हमें भेज सकती है अपना रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, अब ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण के सत्र समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गई रहते और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दंपंग के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल

0: श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि ये कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under different names and with election symbols allotted by the commission. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken this temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on 12 August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website. The examination was held on September 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from 16 to 18 September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Leompo Dien Dungel reviewed all aspects of bilateral cooperation besides

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: श्रोताओ भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे याचू जी, मुझे आगे के कारोबार और आप सभी के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया आपने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के करीब में 11:11 हो रहे हैं। इसी के साथ अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप जुड़े हुए थे आरजे याजू जी के साथ और अब आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी अपने आरजे साथी दांबा के साथ। श्रोता हमारे से दूसरी प्रसारण सभा में साथ दे रहे हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तब चलिए श्रोता दूसरी प्रसारण सभा की आरंभ करते हुए पेश कार्यक्रम फिल्मी लहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर किस बात की, पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मोहब्बतें से। गीत के बोल है आंखें खुली और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत कोई आस्था फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में। आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम फिल्मी लहर में और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत ब्रेक के बाद फिल्म से। गीत के बोल है अजब लहर है और इस गीत को आवाज दी है नीरज फेदार शेखर और विशाल ददलानी ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र,
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

शादाब, आप सुन रहे थे दिल्ली के से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणा एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुति आपके लिए कार्यक्रम गजल। दोस्तों, कार्यक्रम गजल में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गजल जगजीत सिंह की आवाज में, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गजल फिल्म 1982 के फिल्म साथ साथ से मशहूर हुई थी।

दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज में गजल गम का खजाना तेरा भी है।

दोस्तों फौजी भाई और बहनों के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, तो पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म फना से। गीत के बोल है देश रंगीला और इस गीत को आवाज दी है महालक्ष्मी अय्यर ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत छक दे इंडिया फिल्म से। गीत के बोल है बादल पे पांव है और इस गीत को आवाज दी है हेमा सरदेसाई ने।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
3: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम गीत माला में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं AR रहमान की आवाज में गीत माँ तुझे सलाम।

दोस्तों आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम गीत माला में। और दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम के सभी फौजी भाइयों और बहनों को दिल से सलाम। आपकी आप अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत करते हैं। आपकी हिम्मत, कुर्बानी और देशभक्ति को दिल से नमन है। तो चलिए इसके साथ ही पेश कर रहे हैं गीत बॉर्डर टू फिल्म से। गीत के बोल है मोहब्बत हो गई है और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम, जावेद अख्तर और पलक मुच्छल ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत माला यहीं पर समाप्त होते हैं और अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद

0: The afternoon session today, the Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Toor have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: शुभ प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों, कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन पाएंगे वो सुनहरे गाने 60s टू 80s की। जी हाँ दोस्तों, इस सेगमेंट पर मैं आपको ले चलूंगी उन पुराने यादों की सफर की ओर, वो गाने जो आज भी खास है और जिंदा है। तो चलिए, पेश कर रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म गाइड से। गीत के बोल है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।

अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

0: प्यार है,
1: अरे पापा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आराधना से। आपको बता दो कि आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
3: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
3: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
4: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
3: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
5: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
6: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत अजनबी फिल्म से। दोस्तों गीत के बोल हैं एक अजनबी हसीना से और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1974 में और फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति समानता और फिल्म में मुख्य भूमिका में है राजेश खन्ना, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा और आसरानी। दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक को आदि बर्मन ने दिया था और गाने फिल्म की बड़ी खासियत है। राजेश खन्ना और जीनत अमान की जोड़ी फिल्म का सेंट्रल एक्शन थी। फिल्म का टाइटल अजनबी यानी अनजान है जो कहानी के रिश्तों और बदलते भरोसे से भी जुड़ा हुआ है। तो पेश कर रहे हैं आपके लिए अजनबी फिल्म से यह गीत।

0: शादी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
3: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत कश्मीर की कली फिल्म से। गीत के बोल हैं इशारों और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होते हैं। और आपको बता दूं कि अब से कुछ पलों में आप जुड़ेंगे मेरे साथ नए गानों की सिलसिलों में।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
4: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों, आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत किस्मत कनेक्शन फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है अनवा याग्निक, अतीब असलम और प्रीतम चक्रवर्ती।

बस आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के आवाज में फिल्म राज से। अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत लाल पीले किया और इस गीत को आवाज दी है रोमी और तनिष बख्शी ने और फिल्म है तेरी बातों में।

0: The Army Commander, Lieutenant General Pratik Sharma, has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Pratik Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. The successful operation led to elimination of two Jaish terrorists and arrest of one OGW, besides recovery of arms and ammunition. As the Election Commission has temporarily frozen the name and symbol of the All India Trinamool Congress, the Mamata Banerjee camp and the Ritabrata Banerjee camp have both submitted proposals to the commission ahead of the forthcoming by-elections. The Ritabrata camp has proposed three alternative names and symbols. The proposed names are Nationalist Trinamool Congress, Democratic Trinamool Congress and West Bengal Trinamool Congress. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. On his arrival, General Dhiraj Seth received a ceremonial guard of honor. Later, he paid homage at the tomb of the unknown soldier in Moscow. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense, including Vasily Sergeyevich Osmakov, Deputy Minister of Defense. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% from its earlier projection of 6% for the current financial year. The agency said the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. Moody's said India's real GDP growth rose to 8.2% year-on-year in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses and rural communities and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semifinals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Keralam, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Garchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डेल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
3: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व

0: पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीन स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को OGF+ यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
4: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता

0: के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
2: मेरा नाम निरुपमा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं।
3: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
4: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
4: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुट वन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का अरुणासम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। दोस्तों, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, 90s के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। अगर 90s की बात करें तो 90s के गीत सिंपल लिरिक्स और गहरे एहसास से जुड़े हुए होती हैं, ना ज्यादा शोर ना हैवी वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही पेश कर रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म कुर्बान से। गीत के बोल है आओ मैं पढ़ा दूं, और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और सारिका कपूर ने।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत फिर तेरी कहानी याद आएगी फिल्म से। जी हाँ, गीत के बोल है दिल में सनम की सूरत और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-liter dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
2: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
3: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
2: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
3: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत फूल और कांट FM से। गीत के बोल है जिसे देख मेरा दिल, और इस गीत को गाया है कुमार शानू ने।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s यहीं पर समाप्त होते हैं और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और उसके तुरंत बाद मिशमी कमांड और तयगमती श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: दिस इज मॉर्गन बागरा विद टुडेज न्यूज हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities, reviews all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance during his official visit to Bhutan. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju urges citizens to dedicate themselves to building a prosperous, strong and developed India. Says India has witnessed significant changes in infrastructure, connectivity and food security. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman discusses rehabilitation of flood victims with her Nepalese counterpart Dr. Swarnim Wagle in New Delhi yesterday. Dr. Wagle thanked Finance Minister for India's support and expressed appreciation for the assistance extended by India. First meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to be held in New Delhi today. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010, making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, says Semicon 2.0 is expected to generate around 1 lakh crore rupees investment into the semiconductor industry in the coming times. Global ratings agency Moody's today raises India's real GDP growth forecast to 7% for current financial year. The agency says the upward revision reflects the resilience of the Indian economy. Indian Railways approves 493 crore rupees project for the construction of around 38 kilometer new rail line between Mukutban and Gotchanpur in South Central Railway. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: To an Akashwani Itanagar dungi tarik kyap mogrin thami lai lo hingkim katar mokatab to kumalai kum songfola sit gyachining. Prime Minister Narendra Modi bangi thauka India one semiconductor industry talat kang chumboiman semiconductor India lo hingkim katar mokatab inauguration katnai ka यशुभूमि है न्यू दिल्ली है कनका विका थाउ का वर वन कतान कसित मैन्युफैक्चरिंग टेम वन का इंडिया ने अनकांग तसम द पुनमन मोदी थाउ का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वन 13.5 बिलियन यूएस डॉलर ली का 8 बिलियन यूएस डॉलर मो समंग कतान फेस वन सेमीकंडक्टर इंडिया लोहिंग किंग तरमो कताम इवेंट वन वैक ताब एग्जिबिटर्स वरा वैक सम इंटरनेशनल कंपनीज वरा कंट्री व पिगमो डेलीगेट्स वी क्रा लामांग द ख्राई का ददात लाम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक का बांगित डिक्लेमेशन वरा पेंटिंग फा कपेसन वी फेलिसिटेट कन का दातला अन कंपटीशन वन नशा मुक्त भारत अभियान गुंगले समला दातला लोक भवन ईटानगर है कॉम्पिटिशन वन गवर्नर फा सेक्रेटरीट का हकरान का दादला कंट्री मुंग है ड्रग्स तफाई कांग गवर्नर का थाउ का थल चुपुई शव मो चौक मै लब मै चुपुई ने ड्रग्स अनवी तफाई ही लम चुम्बुये हताई हकरात ये दक थाउ का दादला और बाइंगिन पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल का लाइ मोफा सेवा मेरा योगदान लौ हिंग किंग तरमुख ताम मुरा स्वच्छता ही सेवा लौ हिंग किन तर्मो कताम कैंपेन लॉन्च का उका द दादला पीएमसी ऑफिस कंपाउंड गुमिन नगर पासीघाट है शाओ मो म्युनिसिपल ऑफिशर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एनजीओस यूथ ग्रुप्स मार्केट एसोसिएशंस वरा ग्लाद चोंग चुपुई वी नाबोंग कलिप ग्लाद ग्लुंग शोंग तथा कांग वरा संग संग तुल लंग तुल संतलब द ख्राई कतो द दादला वरा Telecom Regulatory Authority of India TRAI domta ka consumer outreach program ka dadla Arunachal University of Studies nam sai hai telecom consumers wara stakeholders san kahit panghitala da tangi da awareness phiu ka da dat la ura faculty ke yidin jawalahal nehru college jnc pasigat fa coordinators meet kam seventh review meeting task force kang tai maning khai ka taw da dat la bangit dbt star college gungle Maharashtra hai Department of Biotechnology DPT dom ta Ministry of Science and Technology ka organize ka uka da dat la ura kyap mo ki yid mountaineering team anjau klong ka rap Indian Army fa second jat battalion mount khangcheng gyau hi alham ka taw dat la 6889 meter north sikkim hai tuesday rat Antarab 1 Rayang East Siang District Haika Shuru Samla Dala August Tarik Kyapmonin Rat Ura Meteorological Center Itanagar Nyau 1 Yellow Color Warning Fika da Dala West Coming Papampore Ura East Siang Lower Dibang Valley Anjau Lohit Kang Wangso Titai Dan Samang Dakhai Kata Dala Ura India Awesa Cricket Team Afghanistan Vi Run waye mo talmonin ka peo ka dadala sab T20 series andat sab nil ka peo ka dadala New Delhi Arun Jaitley Stadium hai Afghanistan 194 run wada over kyap mo kambritin ball mo rat all out chamla da khai katao Afghanistan to team 1 toss pe ne ka ball pang kandang da pray katao dadala only ka ngit kasam training Substance use disorder for doctors, nursing officers, wara clinical psychologists kang samla dadatla nahalagan li. Arunachal Pradesh Drug De Addiction Society ka organize kao ka dadatla. Nasha Mukta Abhiyan gung li. Nasha Mukta Abhiyan wan pang hitala dat training fiw ka dadatla. Untraining wan face kasami samang kai thanay. Nahalagan pasigat namsay hai. Drug we tapai awareness tapit unchan kang rato anleka command tan chang yad
3: HIV nat andam hi like a shangit na chang nat anvik

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता भी आप सुन रहे थे मिशमी कमांड और तय कामती श्रोता का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत यश और ज्ञान आडवाणी की फिल्म टॉपिक से। गीत के बोल है तबाही और इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा और राजशेखर ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वांछा श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों इस तरीके के बाद अब आपके लिए पेश कर रहे हैं कि ये द कल हो ना हो फिल्म से गे के बोल है प्रिटी वुमन और इस गीत को गाया है शंकर महादेवन ने।

0: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे इडुमिसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर सिलापुची जनहलु हिलु मितुब्रेले निमाचनी एतनची इडुमिसमी आहो लागजी जुजुम्बे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में भुनी मई दिल्ली मची यशो बोमीमा ने सेमीकॉन इंडिया एजकने ताहोला ने सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर ने इन्वेस्टमेंट गबामा एग्जीबिशन एकगा आयो पहागा खा इचा सेमीकॉन इंडिया एजकने ताहो इवेंट मा ताहो एग्जीबिटर्स महाकाशो इंटरनेशनल कंपनीज दोने मगाहो कंट्रीज आलो मची डेलीगेशन आलम्ब में गेगा बाखा अरुणाचल प्रदेश मची गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी परनायक में भुनी ईटानगर मची लॉक भवन मने नशा मुक्त भारत अभियान मा लताची ने डिक्लेमेशन ने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज एगाहे बमा अनया लम्रो फेलिसिएटेड हागा ने ला में अतिकमा इचा इमुई गा ngaba ajua he azo chuta done inya nashimane kabane lazembo aromboga gane jan andolan uji कैबन ने वो बोन जो बोगा गए होने गाबा अजी गहे वो शादा लगा का पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल पीएमसी आलम्रो में वार्ड काउंसिलर्स म्यूनिसिपल ऑफिशियल सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओस आई ओ आलम्रो मार्केट एसोसिएशन दोने अजोथुया ने लोकल रेसिडेंट आलम्रो गो आओगा गने अतिकमा अप्राशन ने अखाओ जो बोगा होगा बने अलग पुमलिबा सेवा मेरा योगदान ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन ने बुनी ने अखापे लगा ने पासीघाट घुमिन नगर मची पीएमसी ऑफिस कंपाउंड मने फ्लैग ऑफ सेरेमनी अखाही बखा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीआरएआई आलम्बो में इचाए लपुची इगावे जनो खिनी मचनी मा नामसाई मची अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज मने टेलीकॉम कंज्यूमर्स आलम्बो बुगो ग बने कंज्यूमर्स आउटरीच प्रोग्राम लाने अवेयरनेस प्रोग्राम गए ऑर्गेनाइज एगा बाउखा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जेएनसी पासीघाट मची कानी फैकल्टी मेंबर्स में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आसोनी ग बने कोऑर्डिनेटर्स मीट कम सेवन रिव्यू मीटिंग लाने डीबीटी स्टार कॉलेज प्रोग्राम ग अखा मा अगुगाई बाउखा इचा आसोनीची प्रोग्राम मा स्टार कॉलेज इंस्टीट्यूट मा ची अहोईगा एमिनेंट प्रोफेसर सालम्ब्रो में चिचानेगाई बाउखा अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी आलम्ब्रो में मई दिल्ली मची ए आई आई एम्स गो आओगा गने डॉक्टर्स नर्सिंग ऑफिसर्स दोने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आलम्ब्रो ग बने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर लाने आसोनी के बने ट्रेनिंग प्रोग्राम है बुनी ने नहा लगन मने अखापगम बखा इचा प्रोग्राम मा डॉक्टर्स नर्स दने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आलम्बो में इमुईगा ड्रग दू हाईगा इमुमिंग को इसिया लगने अतुते वे अरुंदा चिपुमा ट्रेनिंग अहगाओ खा अली चाउजी प्रोग्राम है पासीघाट दने नामसाइमा अब अखागाई बाउखा लेबा चपुला पुची जी होलो यो मचिनी इस यंग डिस्ट्रिक्ट मची रायंग मने छिगम्बा इंडियन आर्मी टू जाट बटालियन मोल्टन मची अंगो होलो नि में इचाला पुची लेबाचा आंडोली नि मचिनी नॉर्थ सिक्किम मा खागा एजे तहने मालो बिलन ने इन्यो खिनि मीटर्स एयरुंदी माउंट खंचंग गयो मा शुते गहे बदा होगा इतंचियाहो अलग मान दो भाई
2: एचआईवी एमबे चिपो आसवे आउदा खागा
1: एचआईवी हेम्बे है एचआईवी गिला मिंगची इयु घर दोगा गे कांदुने जीतोगा गे एचआईवी हेम्बे गिला इंजेक्शन ठापो बीजीची ठा दोगा गे मने एचआईवी खी अली ओदा एचआईवी हेम्बे गिला नानी में आ आगे मने खे दोगाई
2: HIV-AIDS है जापा जी गे आँखों वगैरह गे जापा हाथों वगैरह गे आये उधर ने आरंडों में थोबा मने HIV-AIDS की गुमी
3: अरे ने HIV-AIDS गई जिंगाजी तमाको आतुसुवे आरंडा कागा हम्बे गई अब जमा आसागा गई गो अब एंगो याबु इजिगा आतुचितोगा हिवे HIV हम्बे इजी मी कबा आसागा लाजिजी तमाको आगुतेने आतुसुजी इचा HIV हम्बे चिप्रोमा इचिबु आसावदा वोगा इबुया है नेशनल एड्स हेल्पलाइन जी नंबर खगे जीरो खिनी उमा कॉल एजी इचा कोबा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन में चिमे लाहेगा
0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदोमिश मिश्रा का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण FM है जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और ये कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं पहला गीत फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। गीत के बोल हैं पीलू और इस गीत को आवाज दी है इरशाद कामिल, मोहित चौहान और प्रीतम चक्रवर्ती ने।

तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारी दूसरी प्रसारण सभा के अंतिम मोड़ पर और वक्त हो चला है मेरे आपसे अलविदा कहने का। कहीं जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे थमसा श्रोताओं का समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे मंजू जी। दोस्तों हमारे इस दूसरे प्रसारण सभा में साथ दिए रहते प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण और अब मुझे यानी अपना आज साथी दंपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबार रंगमंगा सप्तेम्बर जिलिंग रंगसरमचे तारीख पांग हजनीरा खोकड़ो पांग आरो रंगजा बले बे खुमिनी थोर नांगसो तांसा प्रोग्राम तफंग रे मचौ रंगजा रुंग रंग रो क्वांग कोन का मामाई रो इंडिया रो सिनी कंडक्टर इंडस्ट्री बन म आराउ जगा कयांग मंग मोरो आखेप रार लामलु तांप जांग लामलु मोरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो मचौसा न्यू दिल्ली नंग यासु भूमि नंग सेमी कंडक्ट इंडिया 2026 पर तफंग तो परजु मसो फन बाय तनांग फन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रो मुंगकांग रो न्यू एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस जगह ताम राय रो परखा म इंडिया रो इर रार पर राय कुरुग म कचुपाई रो मो फन तो परम नांगमुंग सेमी कंडक्टर इको सिस्टम पर नरी चेनर आरो इनोवेशन मनई इन्वेस्टमेंट मरा ग्रोथ ताम म अन्या कामवांग तफांग रुक मोमन प्राइम मिनिस्टर रफांग तो अरु नांगमुंग सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 र फर्स्ट फेस नांग 8 बिलियन यूएस डॉलर गन अतवांग 13.5 बिलियन यूएस डॉलर गन अतक तचेन तुंगो प्राइम मिनिस्टर रफांग तो सेमी कॉन इंडिया 2026 नांग मुंकांग वांग रचकरोक अपाद एग्जिबिटर्स महियंग नहीं रचरूम खाग इंटरनेशनल कंपनीज ताम्रा परम बांगयोंग खाग मुंगताम वांग महियंग थोकत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र ड्रग्स पर तथुम रोरे सिंगमुंग पर अमाय तयांग मंग रो मुंगवांग मई म रोखेप तो पर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर र कतो खाम गवर्नर सेक्रेटरी

NASA Mukt Bharat Abhiyan Jakhungnang Declamation and Printing Competition Pu Manisa Itanagar Nang Lok Bhavan Nang Tathung Tunang Competition Chait Vanma Prize Pu Governor KT Parnaik Kut Drugs Falsaro Machuhai Mungnang Nari Hanrungo Governor Fanta Aro Drugs Pu Tathum Vodop Mai Sacharang Rarungo Governor Rout प्रम ड्रग्स र सिंगमुंग प तथेन चिवंग वों काम महियंग नरी सचारा गोमन गोमनोर रफांत पासघाट मुनिसिपल काउंसिल पीएमसी र मनैसा पासघाट नंग पीएमसी वन ऑफिस कंपाउंड अर गोमिन नगर नंग फ्लैग ऑफ सेरेमनी तथुंगलोरे सेवा मेरा योगदान 2026 नई स्वच्छता ही सेवा 2026 कैंपेन पर जिलिंग सी रांतान मतफंग तो पासघाट म्युनिसिपल काउंसिल पीएमसी र प्लांटेशन कामवांग मनई ब्यूटिफिकेशन मरा अवेयरनेस ड्राइव्स वाकाथॉन नई फ्लॉग रन मरा पर जो कम्युनिटी बेस कामवांग ताम नंग म आरो क्लीनिनेस ड्राइव्स नई एनवायरमेंटल कामवांग ताम नंग वार काउंसिलर्स मेहिंग नई म्युनिसिपल ऑफिसर्स मेहिंग रा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एनजीओस यूथ ग्रुप्स मार्केट एसोसिएशन ताम नई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ताम रा पर म लोकल मेहिंग पर से म से चिमोरो तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीआरएआई ट्राइर अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई नंग मचोलिंग रंगखत उत्तरी साप कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम तथुंगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइर टेलीकॉम कंज्यूमर्स मेहिंग फंग नंग नई बलांग स्टेक होल्डर्स मेहिंग फंग नंग थोगरो रे ट्राइ वन र कंज्यूमर्स मेहिंग म अहु रंग तानु वरो अनेक बलिबाई लमलु लमतु ताम मानप ततक तंग म तानरो प्रोग्राम प तथुंगी DBT Star College Program Maharashtra Jakhungnang Task Force 1 Coordinators Meet Kam 7th Review Meeting Tathungchi Praju Jawaharlal Nehru College Pasghat Wang Faculty Members Mai Wanai Kachuchi Ngorokta Achung Surkari Wang Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology Vandra Meeting Pa Sarvam Rama Tathungchi Praju Vamangro Professors Hengranai Star College Wang महिंग र मसौ फांची नांगम आरो मजुवंग स्टार कॉलेज ताम र प्रोजेक्ट नै पोस्टर कुत ताम कमुंग नांग र फांची मुरो क अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स डी एडिक्शन सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वन नै नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर इम्स न्यू दिल्ली प कछुरो रे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर फॉर डॉक्टर्स नर्सिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कमुंग नंग सर्वम राम फर्स्ट फेस ट्रेनिंग प मनैसा नालु नंग तथुंग तो नासा मुक्त भारत अभियान थलिंग ड्रग्स फसा प तंगम तानरो ट्रेनिंग प तथुंग तंगो फान दो इरे ट्रेनिंग प नालु नंग नै पासघाट नंगरा नामसाई हाताम नंग तथुंग छि आरो ड्रग्स म अजा महियंग प ट्रीटमेंट कुरिम काउनंग क्लिनिकल स्किल प तचन छिमन अजांग पर म ड्रग्स म अजा महियंग प राइटर म काउनंग हेल्थ वर्कर्स महियंग दंग यांग प कलोलाई छिमन अजांग ओरो द इंडियन आर्मी वन जाट बटालियन मुल्तान वंग वासर नै खाक माउंटेनर्स महियंग प मचुबा सने सोम साच नॉर्थ सिक्किम नंग माउंट खानचेंग याव कान नंग कुंगतंग ओरो द आर्मी वंग वासने खाग महिंग प अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग रायंग हाम अगस्त जिलिंग रांसास ने तारिक्सा कुंफंग तंग ओरो द कानचुंग नंग कुंगत बलांग नंग नरी सेचारांग खाम कुंगरक तंग ओफान द ईटानगर वंग मेट्योलॉजिकल सेंटर अरुणाचल प्रदेश वंग ईस्ट कामेंग नई वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट मरा पाकुम परे ईस्ट सियांग नई लोअर दिबांग वैली अंजाव डिस्ट्रिक्ट नई लोहित डिस्ट्रिक्ट ताम येलो कलर वार्निंग कुत जखुंग नंग इरे डिस्ट्रिक्ट ताम न अखाव हानांग रामो राफिक नई रंग हई यम रंग अहन जिनचिम अजांग रोत
परमो मेन्स क्रिकेट खेल नंग इंडिया ने अफगानिस्तान टीम तुंग नंग थर्ड टी ट्वेंटी मैच पर मने रंग जा न्यू दिल्ली नंग अरुण जेटली स्टेडियम नंग तो तो प्रजु इंडिया रो 127 रन्स में चेरो टी ट्वेंटी थ्री मैच सीरीज अतप 3-0 मचाई तो इंडिया रो कचाई बुक रो 221 रन्स मंत अरो वासनन खिलाड़ी आउट जंग तो पढ़ाई मुसफ़ा लंग अफगानिस्तान रो 14.1 ओवर्स नंग 94 रन्स दे मनरूरे वडोप खिलाड़ी आउट कयांग वाला तो इरे कचाई है अफगानिस्तान टीम रो टॉस पर चेरो फील्डिंग लंतुंगो रोक तो रुंगरंग इतना थुम रहा।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा डायलेक्ट न्यूज। थैंक यू सो मच दांपाक जी आके का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत ही सुहाना बीते। दोस्तों, छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं, बस कदम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहिएगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। ये भी बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो, और मैं हूँ आज के इस सफर में आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो।

0: दोस्तों हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों के साथ। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराते हैं आपको हमेशा। तो चलिए इसी मनोरंजन के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Good evening.

दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। गहने सिर्फ सोने चांदी की पहचान नहीं होते हैं, इनमें सदियों पुराने अरमान होते हैं। गहने सिर्फ सोने या चांदी की पहचान नहीं होती, इनमें सदियों पुराने अरमान होते हैं। हर कंगन, हर झुमका, हर पायल की झनकार में किसी न किसी रिश्ते की एक एहसास होती है। जब हम गहनों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं पायल की। पायल और पायल की बात कर रहे हैं तो घुंघरू भी आता ही है, तो चलिए आज बातें करते हैं पायल और घुंघरू के बारे में, जिन्हें महिलाएं बहुत ही शौक से पहनती हैं। दोस्तों पायल चांदी, सोने या अन्य धातुओं से बनी पैरों की आभूषण होती है। इसे मुख्य रूप से श्रृंगार और पारंपरिक आभूषण के रूप में ही पहना जाता है। कई पायलों में छोटे छोटे घुंघरू भी लगे होते हैं, जिससे चलते समय मधुर आवाज आती है। घुंघरू क्या है दोस्तों? फिर अगर पायल भी पैरों में पहने जाते हैं तो फिर घुंघरू क्या है? घुंघरू छोटे धातु के खोखले घंटी नुमा मनके होते हैं, जिनके भीतर छोटी धातु की गोली होती है। इन्हें अक्सर एक पट्टी या डोरी में पिरोकर पैरों में बांधा जाता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है शास्त्रीय और लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। नर्तक के पैरों की गति के साथ घुंघरों की आवाज ताल और लय को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों आपको पता ही हो गया होगा कि घुंघरू और पायल में क्या डिफरेंस होता है। नाचते समय या फिर ये जो नर्तक होते हैं यही पहनते हैं, जबकि पायल आभूषण के तौर पर हर समय पहना जा सकता है। दोस्तों पैरों में आभूषण पहनने की परंपरा वैसे तो बहुत प्राचीन है। इसका कोई एक निश्चित आरंभ या वर्ष बताना शायद पॉसिबल ही नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप पे प्राचीन मूर्तियों, साहित्यों और पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि स्त्रियां पैरों और तखनों में आभूषण पहनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आभूषणों और मूर्ति कला में शरीर के विभिन्न अंगों को सजाने की परंपरा का प्रमाण मिलते हैं। हालांकि किसी विशेष वस्तु को आधुनिक पायल के बिल्कुल समान मानना सावधानी के साथ ही उचित है। बाद में भारतीय साहित्य और मंदिर कला के नुपुर और पायल जैसे पैर

और दोस्तों घुंघरू की बात कहे तो घुंघरू का नृत्य से गहरा संबंध है। समय के साथ पैरों में बांधी जाने वाली छोटी घंटियों का संबंध नृत्य की परंपराओं से बहुत मजबूत पाया जाता है। भरतनाट्यम हो, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी जैसे भारतीय नृत्यों में घुंघरू का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैरों की ताल, गति और लय को दर्शकों और संगीतकारों तक पहुंचाने में भी इसका बहुत अहम भूमिका है। तो दोस्तों घुंघरू और पायलों के बारे में और भी बातें करेंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का।

तो मेरे प्रिय साथियों, आपने आनंद लिया इस गीत का अर्पण फिल्म से। दोस्तों, भारतीय परंपरा में पैरों के आभूषण को केवल सौंदर्य से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उन्हें स्त्री श्रृंगार, विवाह, लोक संस्कृति और नृत्य से भी जोड़ा गया है। अलग अलग क्षेत्रों में पायल के आकार, नाम, धातु और पहनने की शैली अलग अलग रही है। अगर संक्षेप में कहूं तो पायल पैरों का पारंपरिक आभूषण होता है, जबकि घुंघरू झनकार पैदा करने वाली छोटी घंटियां विशेषकर नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, फटाफट आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का।

दोस्तों, पायलों की बात करते करते बता दूं आपको कि आप सुन रहे थे इस गीत को दीवाना फिल्म से, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार बातों और कुछ और मजेदार गीतों के साथ। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्ते डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दे की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना के LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KG पटनायक रिटायर्ड ने ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। द्विपक्षीय स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के मालोतारिन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता का शुभारंभ किया। शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने तवांग स्थित थुकतेन शेड्यूलिंग में SEE लर्निंग पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। पासीघाट नगर परिषद PMC ने पासीघाट के गोमी नगर स्थित PMC कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के साथ महीने भर चलने वाले सेवा मेरा योगदान 2026 और स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। भारतीय दूरसंचार निगम प्राधिकरण ट्राई द्वारा आगामी 29 सितंबर को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी ओजाकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिम्पो डीएल धोंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की है।
1: श्री जयशंकर और श्री धोंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धोंग्याल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक के से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्र क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितने ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकती। श्री मिश्र ने कहा है कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों के भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे।
2: HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। ये विमान स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जो आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी असैन्य हेलीकॉप्टर है। ये उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2000 2033-34 तक वायुसेना को दो सीट वाले 29 MK-1A हल्के लड़ाकू विमान सौंपने की योजना है। बेंगलुरु से सुधिंद्र।
0: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पानायक टटायक ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित डिक्लेमेशन और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया है। इन प्रतियोगिता का आयोजन राज्यपाल की पहल पर प्रधानमंत्री के देशव्यापी आह्वान के समर्थन में राज्यपाल सचिवालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य नशे के खतरे को समाप्त करना और एक स्वस्थ, सशक्त और अधिक जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। अपने

0: सदन में राज्यपाल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को और देश के सामने मौजूद सभी गंभीर सामाजिक चुनौतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, जिसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जागरूक नागरिक की समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विनाशकारी प्रभाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष का स्वच्छ ही सेवा अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें स्वच्छता लक्षित इकाइयों और स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों का रूपांतरण, स्वच्छ पाठशाला फॉर युवा स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता में समृद्धि शामिल है। देशव्यापी अभियान के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के मालोतारिन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छ पाठशाला युवा फॉर स्वच्छता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता की आदत को विद्यालय से अपने घरों, गांवों, कार्यस्थलों और कार्यालयों तक ले जाने का आह्वान किया। शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने तवांग स्थित तुकतेन शेरुपलिंग में एसई लर्निंग पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का आयोजन कार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य विभाग द्वारा थुपतेन शेरुपलिंग फाउंडेशन तवांग के सहयोग से किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर देना है। 3 दिवसीय कार्यक्रम शिक्षकों को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक यानी एसईसी लर्निंग के बेहतर समझ विकसित करने तथा करुणाशील, जिम्मेदार और मूल्य आधारित सीखने के वातावरण तैयार करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। पासीघाट नगर परिषद पीएमसी ने पासीघाट के गोमिन नगर स्थित पीएमसी कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के साथ महीने भर चलने वाले सेवा मेरा योगदान 2026 और स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान की शुरुआत की। सेवा मेरा योगदान 2026 के तहत पीएमसी वार्ड पार्षदों, नगर निकाय के अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, युवा समूहों, बाजार संघों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निवासियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के लिए जुटाया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा आगामी 29 सितंबर को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दूरसंचार उपभोक्ताओं और उद्योग से जुड़े अन्य हितधारकों तक पहुंच बनाने तथा हाल के समय में दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ट्राई द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर एम्स के सहयोग से नाहरलगन में डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारियों और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों के लिए मादक पदार्थों के सेवन विकार यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत हुई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति के विधेयक और प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है।
0: और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagra. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from 16th to 18th September, Dr. Jayashankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo D. N. Dhungyal, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciate

0: aided the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several developmental projects. The ministers also welcomed the operationalization of the UPI-based facility enabling Bhutanese nationals to make digital payments in India using Bhutanese mobile applications. India and Nepal discussed measures to facilitate greater market access for products of both countries. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said that during the two-day meeting of Intergovernmental Subcommittee on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade, which concluded yesterday, both sides reviewed a wide range of issues. It is related to market access, customs and trade facilitation, standards, food safety, border infrastructure, rail and road connectivity, and other trade-related matters. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Buddha Bahadur Gurung. Union Defence Minister Rajnath Singh will grace the handing over ceremony of HAL platforms to the Indian Air Force and Pawan Hans in Bengaluru today. The public sector aviation manufacturer HAL will hand over 2 LCA FOC trainer aircraft to IAF, 4 Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. A contract of 16 LCA fighter aircraft and 4 twin seaters in FOC configuration was placed in 2010. HAL plans to deliver 29 MK-1A twin-seater LCA aircraft to the IAF by 2033-34. Indian Railways has approved a 493 crore rupees project for the construction of around 38-kilometer new rail line between Mukutban and Gadchanchur in South Central Railway. The Railways Ministry today said that the new rail line will provide a shorter and more efficient rail route, reducing travel distance, transportation time and associated costs. It will also provide an alternative route to decongest the existing Wardha-Manikghar section, supporting smoother movement of freight traffic. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on 12 August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma commends White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Northern Command Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with Jammu and Kashmir Police and CRPF once again underscores the strength of joint inter-agency coordination in the counter-terrorism grid. The successful operation led to elimination of two Jaish terrorists and arrest of one OGW besides recovery of arms and ammunition. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. अभी आप सुन पाएंगे नॉकटेज श्रोताओं का कार्यक्रम.
0: आप आकाशवाणी ईटानगर जिपगरवा नुक्ते प्रोग्राम अथुरंगजथा वानबंगा सानपो तंगरे नंगनुक्ते खोबोचो तटकत थजाहु कुटपाचा चीवानी से तारीख सेप्टेम्बर जा खोबोचो को देपा किमकिम देसिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंगे का इंडिया सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रंग वांते प्रिफर डेस्टिनेशन बोना रंग चंतो तदंगा तो अफंग स्टेप उठाएगा न्यू दिल्ली यशोभूमि नंग सेमिकॉन इंडिया 2026 इनोग्रेशन हो नोमा मिस्टर मोदी मंगे का पूरा वॉल अन्यान दे को ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन लमका इंडिया आर जरूरत पा पूरा होन रंग रेम रेम में तैयार होन का ते मंगे का इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पा तेजी मा एक्सपांड देगा अकवा इनोवेशन इन्वेस्टमेंट दिको ग्रोथ रंग अन्यान अपॉर्चुनिटी से चुमिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंगे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डिमांड पा न्या रंग तेजी में बोली का हेतु सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरा सिस्टम पा बेटर इंटीग्रेट होन रंग फोकस होन का और को मेमोरी प्लेसमेंट दिको हिट मैनेजमेंट में इंक्लूड ते मंगे का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आउटले इन्वेस्टमेंट बजट फर्स्ट फेज को 8 बिलियन यूएस डॉलर को वा पोरा लमा 13.5 बिलियन यूएस डॉलर होन का सेमीकॉन इंडिया 2026 को चा इरोक नो मजा एग्जीबिशंस चारोम इंटरनेशनल कंपनीज टिको रुक बंगा नो मजा कंट्रीज वा डेलीगेशन से पार्ट कप का गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के दीप्र नाइक ममजा लोक भवन ईटानगर नंग नशा मुक्त भारत अभियान खोनंग ऑर्गेनाइज हुआ डिक्लेमेशंस एंड पेंटिंग कंपटीशन विनर्स नंग फेलिसिटेड हुआ का आर कंपटीशंस पा गवर्नर सेक्रेटरियट गामा गवर्नर इनिशिएटिव खोनंग ऑर्गेनाइज हुआ आर एम पा प्राइम मिनिस्टर नेशन वाइड कॉल पा सपोर्ट हुआ का अको ड्रग्स प्रॉब्लम पा खोटम हुआ दिको वन थे हेल्थियर स्ट्रॉगर दिको रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी बोना रंग हुआ का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गामा सेप्टेम्बर रुकनी वानिकू तारीख को अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी नाम से नंग कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वन मेन अर प्रोग्राम एम पा टेलीकॉम कंज्यूमर निया इंडस्ट्री वा अहन स्टॉक होल्डर हे नंग पोंचा रंग दिको अर रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी को रंग वन का अर प्रोग्राम थ्रू मी यान हे नंग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंट इनिशिएटिव गामा अवेयरनेस कोमिन अरे इनिशिएटिव मेन पर्पस पा टेलीकॉम कंज्यूमर इंटरेस्ट पा प्रोटेक्ट हुन दिको बेटर तरी कामा अवेयर हुन में पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल पीएमसी मा गोमिन नगर पासीघाट नंग पीएमसी ऑफिस कंपाउंड नंग फ्लैग ऑफ सेरेमनी दम नंग जंग थे चोली का सेवा मेरा योगदान 2026 दिको स्वच्छता ही सेवा 2026 कैंपिंग लॉन्च हुन का सेवा मेरा योगदान 2026 खोनमा पीएमसी वाद काउंसलर म्युनिसिपल ऑफिशियल सीएचजीएस एनजीओ यूथ ग्रुप मार्केट एसोसिएशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टिको लोकल रेसिडेंस हे दमनंग क्लीनलीनेस निया एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को इंक्लूड होनमिन अरे एक्टिविटीज को प्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन अवेयरनेस ड्राइव वाकाथॉन ब्लॉक रन निया अहान कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है इंक्लूड तंगमिन जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जीएनसी पासीघाट व वन्नी फैकल्टी मेंबर महाराष्ट्र नंग डीबीआई स्टार कॉलेज प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेशन समिट कम सेवेंथ रिव्यू मीटिंग को पार्टिसिपेट कब का अरंगी रोम प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गामा ऑर्गेनाइज हुआ का आर प्रोग्राम को इमिनेंट प्रोफेसर वाइस स्पेशल लेक्चरर डिको लीडिंग स्टार कॉलेज इंस्टीट्यूशंस व एक्सपीरियंस डिको प्रेजेंटेटिव ही इंक्लूड आर दम को रुक रोम वांत है कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस डिको रिव्यू मिन होन का डिको ऑनगोइंग स्टार कॉलेज गामा पोस्टर प्रेजेंटेशन मिन होन का सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर डिको क्लिनिकल साइकोलॉजी गामा गी रोम ट्रेनिंग थीं का मजा फर्स्ट फेज पा नाहरलगन नंग शुरू हुआ का अर ट्रेनिंग पा अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स डी एडिक्शन सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मा नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर एम्स न्यू दिल्ली दमनंग रूम लमा ऑर्गेनाइज हुआ का अर ट्रेनिंग पा नशा मुक्त भारत अभियान खोनमा ड्रग्स अगेंस्ट फाइट हुआ रंग हेल्थ वर्कर हे स्किल निया नॉलेज पा बोरा रंग या रंग जरूरी था हुआ का अर ट्रेनिंग पा वन रोम फेज नंग ऑर्गेनाइज हुआ मिन नाहरलगन पासीघाट दिको नाम से नंगा आर ट्रेनिंग एम पा ड्रग्स एडिक्शन ट्रीटमेंट को हेल्थ वर्कर हे क्लिनिकल स्किल पा इंप्रूव हुआ दिको ड्रग्स एडिक्ट हे दम नंग डीलिंग पोट को हेल्थ वर्कर से एटीट्यूड पा पॉजिटिव चंदंगा गा महुआन का मेन्स क्रिकेट को इंडिया में अफगानिस्तान 127 रन महारेगा और थर्ड टी ट्वेंटी पर न्यू दिल्ली नंग लूंगा और दम को इंडिया में थर्ड मैच सीरीज को 3-0 में जीत

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

दोस्तों, शाम ढल रही है, दिन अपनी रफ्तार धीमी कर रही है और अब बारी है कुछ खूबसूरत पलों के नाम इस शाम को करने का। स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। और पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए, ये जवानी है दीवानी फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाज में और हर्षदीप कौर के आवाज में।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं हमारे वीकेंड मैगजीन, वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम की ओर।
1: Namaste and a very warm welcome to all of you as we have come together for another edition of our weekend special magazine show. I'm your host Zulekha Topiwala.

कृषि यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोता, इस बार आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।

दोस्तों, दिन भर के थकान के बाद कुछ देर आराम कीजिए, कुछ देर सुकून के पल बिताइए। और ये पल तभी मिलते हैं जब आपको अपने मनपसंद गीत जब आप अपने मनपसंद गीतों का आनंद लेते हैं। आप सभी आनंद ले रहे हैं इस वक्त हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर। पहला गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का पापोन की आवाज में।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रुति स्टेबिन बैन और आशीष कौर के गाए हुए इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेगमेंट की ओर, जहां आज आप सुनेंगे और हमारा टॉपिक है भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल प्राइज विनर, जिसके तुरंत बाद फिर से आप सुन पाएंगे एक रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय। आज की विशेष कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस कार्यक्रम में के लिए हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल यूथ अवार्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया रोबर संजीत दास, जो हमें अपनी इस पुरस्कार के बारे में जानकारियां देंगे कि उन्होंने इस पुरस्कार के लिए कितनी संघर्ष की है। नमस्कार संजीत जी।
2: नमस्कार।
1: आपको हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीत जी, आपने रोबर यानी कि स्काउट गाइड में कब से ज्वाइन किया है?
2: मैंने 10 जुलाई 2010 में मैंने न्यूजीली गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से मैंने स्काउटिंग की यात्रा शुरू किया।
1: आप कितने वर्ष के थे उस समय?
2: उस समय करीब मैं 12 वर्ष का था।
1: आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको स्काउटिंग ज्वाइन करना चाहिए?
2: मुझे एक ऐसा लगा, जब मैं स्कूल में था उस समय में मैं देखता था कि सारे लोग, जितना भी स्टूडेंट है, वो उन लोग स्कूलों में कई राष्ट्रीय और ये राज्य के जितना भी प्रोग्राम है उसमें उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और 15 अगस्त में उन लोग परेड करते हैं, और उन लोगों का जो डिसिप्लिन है काफी अच्छा रहता है और उन लोगों का एक अलग ही आइडेंटिटी पहचान होता है। इसके कारण मैंने सोचा कि मैं भी स्काउटिंग में ज्वाइन करूं।
1: स्काउटिंग में ज्वाइन करने को लेकर विशेष कर से लड़कों को क्या लाभ होता है?
2: विशेष करके लड़कों को पर्सनैलिटी ग्रोथ, उसके बाद में लोगों को सेवा देना, वो सब
1: फायदा होते हैं। मैंने सुना है स्काउटिंग में ज्वाइन करने से काफी मेहनत करना पड़ता है और लोगों को बहुत व्यस्त भी रहना पड़ता है, ये बात कहाँ तक सही है?
2: जी, ये बात बिल्कुल सही है, मेहनत तो लगती है वहाँ।

0: आपको शारीरिक मेहनत और दिमागी तौर पर ज्यादा ही मेहनत वहाँ पे लगती है। जैसे कि आपको दिमागी, जैसे कि आप मान लो आपको उसमें फर्स्ट एड के बारे में सीखना
1: अच्छा
0: होता
1: अच्छा
0: है, उसके बाद में आपको नोटिंग को याद करना होता है और नाइट ट्रैकिंग करना होता है, कई सारा एक होता है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे सीखते हैं।
1: तो उनको करने में बहुत समय लग जाता
0: बहुत
1: होगा,
0: बहुत समय लग जाता है
1: तो इसमें विद्यार्थियों को पढ़ाई में नुकसान नहीं पहुंचता है क्या?
0: इसमें। विद्यार्थी को खुद जानना है कि सबसे पहले पढ़ाई को सबसे आगे रखना होता है, और स्काउटिंग में भी वही सिखाते हैं कि पढ़ाई को सबसे पहले, उसके बाद स्काउटिंग।
1: तो चलिए संजीत जी, आपकी राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बातें करते हैं। आपको जब पता चला कि आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आपको कैसा महसूस हुआ है?
0: मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे जानकारी मिली कि आपको सतीश आर खन्ना फेलोशिप अवार्ड से आपको सम्मानित कर रहे हैं, तब मुझे, सच बोलो तो मुझे काफी एक विश्वास नहीं हुआ कि मुझे, मेरे जैसे एक छोटा सा एक स्काउट को इतना नेशनल अवार्ड से सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
1: तो इस अवार्ड में आपको सफलता देने के लिए आपके साथ कौन-कौन मौजूद थे जो आपको आगे बढ़ाने में मदद किया हो?
0: तो इस अवार्ड के सफर में मुझे सबसे पहले मेरे जो स्कूल थे और जो स्काउट मास्टर थे, और खास करके हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर भारत स्काउट एंड गाइड अरुणाचल प्रदेश, उन सभी का ब्लेसिंग से ही मैं इस अवार्ड को पा सका।
1: अच्छा, तो सभी ने आपका बहुत बहुत साथ दिया है कि नहीं? तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने किन मुख्य चुनौतियों का सामना किया, मतलब क्या क्या संघर्ष किया आपने, जिसके बाद ही आपको ये अवार्ड दिया गया है?
0: इस अवार्ड को मिलने के लिए मैंने करीब स्काउटिंग में 15 साल मैंने स्काउटिंग में दिया, और कई ट्रेनिंग से गुजर कर मैं आया, और कई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी किया, और कई नेशनल इवेंट में भी रिप्रेजेंट किया अरुणाचल से।
1: जब आपने बहुत तकलीफों का सामना किया ट्रेनिंग करते समय, तो आपको कभी कभी ऐसा लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, हार मानने का जैसा सिचुएशन आए आपके लाइफ में?
0: मुझे ऐसा सिचुएशन हमारे स्काउटिंग में, सिचुएशन को ही फेस करना होता है, तो सिचुएशन को हम लोग साइड करके, हम लोग उस चुनौतियों को ही हम लोग एक्सेप्ट करके उसको कैसे हल निकाले, हम उसमें काम करते हैं।
1: अच्छा, मकसद ही वही रहता है कि सिचुएशन को है किस
0: जी,
1: तरह से
0: हैंडल करना
1: हैंडल
0: होगा।
1: करें। तो इस पुरस्कार के बाद आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं?
0: मैं सोचता हूँ कि ये जो अवार्ड है, ये एक सिर्फ अवार्ड नहीं है मेरे लिए, ये एक भरोसा है और ये एक जिम्मेदारी है। मैं जितने भी मेरा सोच है, जितना भी सोच है कि सारा युवा जो ये स्काउटिंग से जुड़े और इसके इसमें काम करते हुए देश में एक सच्चा नागरिक बने और देश के लिए सेवा दे।
1: तो कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं चाहते उसके बच्चे स्काउटिंग में बिजी हो और अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए, तो उन माता पिताओं को आप क्या कहेंगे?
0: मैं उन सभी माता पिताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को स्काउटिंग में जोड़ने दे, ताकि उसका भविष्य भी अच्छा हो और वो एक सच्चा नागरिक बने।
1: हाँ, उनका ऐसा कहना भी होता है स्काउट करके कोई फायदा नहीं है, तो इस बात के लिए आप क्या कहेंगे?
0: स्काउटिंग में मैं भी फर्स्ट ऐसे सोचा था कि स्काउटिंग में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जब मैंने स्काउटिंग को जड़ से करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा, तब जाकर मुझे पता चला कि स्काउटिंग एक भविष्य के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा एक मूवमेंट है।
1: तो संजीव जी, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए गए हैं और कहाँ पर आपको मिला?

0: इस कार्यक्रम के तहत।
1: जी, मैंने सुना है आगे जाकर के जो अवार्डीज है उनको श्रीलंका में एक बहुत बड़ा गैदरिंग है उसमें जाने का अवसर
0: दिया
1: दिया
0: जाएगा
1: जाएगा।
0: सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ना, अपनी तरफ से आप लोग
1: जी,
0: करके जाएंगे।
1: उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे सुनने को मिला।
0: अच्छा, आपको इस पुरस्कार के बाद कुछ धनराशि भी मिले हैं क्या?
1: जी, मुझे सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद मेडल, उसके बाद में एक विवेकानंदा का स्टेचू
0: जी,
1: मूर्ति, उसके बाद में और 25,000 का चेक।
0: चेक दिया गया
1: जी
0: है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बोल रहे थे ISGF फेलोशिप, मतलब उसका मतलब क्या होता है फेलोशिप?
1: जो इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप जो होता है वो होता है एडल्ट स्काउटिंग।
0: अच्छा,
1: जो जो स्काउट एंड गाइड है, भारत स्काउट एंड गाइड जो है वो है एक यूथ प्रोग्राम। तो एडल्ट स्काउटिंग, जो एडल्ट स्काउटिंग गाइड, जो स्काउट एंड गाइड फेलोशिप है वो उनको सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा, तो जैसे कि मैं अगर ज्वाइन करना चाहूंगी तो मैं भी कर सकती
1: जी,
0: हूँ।
1: आप भी बिल्कुल कर सकती हो।
0: तो संजीत जी, आपसे बातें करते करते बहुत अच्छा लगा और समय भी निकल ही रहे हैं, तो आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी युवा पीढ़ी, जो अभी के युवा पीढ़ी है, सभी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप स्काउटिंग में जुड़कर अपने आप को बेहतर बनाइए, काबिल इंसान बनाइए और देश की सेवा में योगदान दे और स्काउटिंग में जुड़े।
0: बहुत अच्छी बात है। तो संजीत जी, आपने हमारे आकाशवाणी ईटानगर के लिए अपनी कीमती समय दिए हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी।
1: धन्यवाद।
0: तो अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम और हमारे बीच मौजूद थे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजित किया गया संजीत दास जी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोता, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर, और अभी आप सुन रहे थे भारत स्काउट एंड गाइड नेशनल प्राइज विनर के साथ एक साक्षात्कार, जिनका नाम है श्री संजीत दास जी। चलिए इस बार आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको एक रेडियो रिपोर्ट की ओर।

0: welcoming the gatherings, Arunachal Pradesh Tribal Association President and Organizing Chairman Zamru Ruza highlighted the importance of sports in promoting discipline, teamwork, and healthy competition among the youth. The program also witnessed the felicitations of the chief guest and distinguished guest. Addressing the gatherings, the guest of honor, Lekanari Thadar, Mayor of Itanagar Municipal Corporation, appreciated the efforts of the organizers in promoting tribal and encouraging youth participation in sports. Speaking on the occasion, Chief Guest Techi Kaso, MLA and advisor to the Home Department for Urban Affairs and Land Management, expressed his happiness at witnessing the enthusiastic participation of young athletes across the state. He congratulated the organizers for providing a valuable platform for the youth to learn, compete, and develop their talents.
1: ये जो बेंच है हमसे ज्यादा बड़ा हो गया. मैं आप सभी का पार्टिसिपेट देख के बहुत खुश हुआ और गमरू रोजा जी इस बेंच की इस खेल की चेयरमैन प्रेसिडेंट भी है और इनकी सेक्रेटरी तमाम उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और साथ ही आप सभी का जितना टीम मैनेजर है कोच है ऑर्गेनाइजर सभी को मैं दिल से आप सभी को बधाई देना चाहूंगा. आप सभी ने एक अरुणाचल की एक नौजवान को चाहे वो बेटी हो या बेटा हो उन्हें एक सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया और एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया. इसमें आप लोग एंजॉय कर सकता है अपना आप को आगे ले जाने में आप लोग सक्षम होगा क्योंकि ये खेल हम भी देखा नहीं है. आज हम भी पहली बार आया है तो आप लोग अभी खेलेगा मैं भी थोड़ा समय देखने का कोशिश करेगा क्योंकि ईटानगर का जो यहाँ का जो एमएलए का शिपमेंट आता है हर दिन और आज आप लोग टीम जो पार्टिसिपेट किया भी इंटर अरुणाचल से हर दिन टीम आया है मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी कामयाब हो और मैं जांच बनेगा तो सभी को मैं बराबर का ही प्राइज देगा. लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता है खेल में तो जीत हार होता है तो एक ही टीम जो है फर्स्ट प्राइज मिलेगा उससे जो सबसे बेहतर खेलता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी दिल से अपना डिस्ट्रिक्ट से जैसे इस खेल को योगदान करने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए घर से जब निकल आया स्कूल से जब निकल आया हम जीत के आएगा और उस तमन्ना में आज आप लोग खेल भी खेलना है ये दो दिन में और हमेशा दिमाग से ही काम लेना चाहिए. हाँ खेल में शरीर का पूरा उपयोग होता है और उससे गलत में उपयोग नहीं करना चाहिए और हम लोग को भी.
0: तेजी का सो सही डेट Such events help young guide people in the right direction and motivate them to move forward with confidence and discipline. He remarked that while sports have winners and losers, participation should never be discouraged by defeat, but instead learn from their experience and continue striving for excellence. Sharing his personal journey, he recalled his keen interest in learning karate during the 1980s and spoke about his progression from grassroots leadership to becoming a four-time MLA. He encouraged the youth to remain determined, work hard, and never give up on their dreams. He further stated that Olympic athletes are ordinary people who achieve success through dedication and perseverance, and urge participants to believe in their own potential. The chief guest also advised young people not to be discouraged by criticism while pursuing good work. Instead, He urged them to stay focused on their goals and continue making efforts to achieve success, thereby inspiring others around them. The chief guest later officially declared the championship open, following which the first match of the tournament got underway. The program concluded with a vote of thanks delivered by Bamang Take, Secretary of Arunachal Pradesh Throwball Association and Organizing Secretary of the championship. He expressed his heartfelt gratitude to chief guest Techi Kaso, special guest Joram Tad, guest of honor Likanari Tadar, official of the Sports Authority of Arunachal Pradesh, participating teams, coaches, referees, volunteers, sponsors, media personnel, and all those who contributed to the successful organization of the championship. He also thanked the players for their enthusiastic participation and sportsmanship and expressed hope that the event would further strengthen the growth of throwball in Arunachal Pradesh. With the vote of thanks, the inaugural program of the first state level Throwball Championship 2026 came to a close, marking the beginning of an exciting competition aimed at promoting sportsmanship and nurturing young sporting talent in the state. With this, we conclude our report on the event. We hope this report has given you a clear insight into the program and its significance. This is Gidin Singh reporting from Akashwani Itanagar. Thank you for listening. Namaskar.

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे एक रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, अरुण एफएम यही उद्देश्य रखता है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों के साथ। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराते हैं आपको हमेशा। बने रहे इसी तरह से हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद लेते रहिए एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
4: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
3: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
4: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
3: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
4: अधिक जानकारी

0: नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
1: ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

छोटा भूल भुलैया 3 फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बता दूं कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

Si Akashwani Itanagara, Tanakadaram Aserupa Kumruksidola Seyum Ka Adipabuvam Iroptum Karapa Adilutadam Tatpaya Luvinasi Justina Gamming Maloka Gikana Longadalo Prime Minister Narendra Modi B Semicon India 2026 Perboam Yashobumi New Delhi Lo Igoklan Boto Perboagomlo India Semiconductor Industry A Country Takam Lok Botayana Industry Per Igaboya Amla Lukan Bido PM Modi B Lukan Bidona India Semiconductor Ecosystem Akokom Investment Innovation Ilado Per Igabodung Amla Lukan Bido India Semiconductor Mission 2.0 $8 billion loka $13.5 billion per ikai dalo apana longalo aing kolang anyi kopa project am toruk situng amla lukan bito Semicon India 2026 per bolo 600 exhibitor 300 international companies dalo aing ang kopa country lo botta botta na migom kedenga yamun gato नशा मुक्त भारत अभियान लोक आगम लोक हनाम दलो पेंटिंग एक हनाम पर बोलोक विनर के दिन अम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पर नायक बे अमानम बिगा बोतो पर बोसीम लोक भवन इटानगर लो मलोक लोंगा दलो लो दुम बम तो लोक एक हनाम पर बोसीम नशा मुक्त भारत अभियान अ तेला दोला ड्रग इना कयंको कदिंग अम आइमो दोंकुला आइना बदांग लो अंदोला सोसाइटी अम कांगुर दोंकुप अमला इगबोनाम को गवर्नर बे प बोआगम लो लुकान बिदोन ड्रग्स इना कदिंग अम गवर्नमेंट पतोम इतुम लामाय अकुमरांग कम आगे क अमाओ अम लुनोमला स्कूल कॉलेज लो पोरी बाबू कदिंग पोरिको कदिंग अम ड्रग लो की नाम लन्ना के दिंग अम लुनम का नाम ला दलो सोसाइटी के दिंग अकोम इगुर कांगुर ला तकाम ऐ लको मुलो अदुयाये अमला लुगम पिदो मलोक गकाना लोंगा दलो पासीगत म्युनिसिपल काउंसिल अ सेवा मेरा योगदान दलो स्वच्छता ही सेवा 2026 कैंपेन आबांग लोक फ्लैग अम ताबाद बोतो परबोसी पीएमसी ऑफिस ग्राउंड गुमुन नगर पासीगत लो लोदुम बोमतो सेवा मेरा योगदान 2026 आरालो इगा बपने वार्ड काउंसिलर म्युनिसिपल ऑफिशियल सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओ यूथ ग्रुप मार्केट एसोसिएशन educational institution dalo local resident bulok agir ger panama asing lalik nam among kedeng am de nam pe ibom nam dalo abut awareness campaign kedeng am kom iboye telecom regulatory authority of india arunachal university of study nam sai lo 29 september lo consumer outreach pe boko lo dum boye पर बसो मोबाइल फोन इंटरनेट इना के दिंग अम अने रूल दलो आगे के राइट्स अम केंगा पे दोप अमला लुनोम इनम बोये तना के दिनो लोलो तत आगम सिम आकाशवाणी इटानगर लोक तक पादुं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोंगुम कोप कोऑर्डिनेटर मीट कम सेवन रिव्यू मीटिंग पर बोको महाराष्ट्र लो इलन गबोतो

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो मनोरंजन के इस सिलसिले को चलिए और भी आगे लिए चलते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

आइए दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम बातें करेंगे एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्हें आप सभी क्या हम सभी बहुत ही पसंद करते हैं। जी हाँ श्रोता, आज हम बात करेंगे क्या बात और आप सभी के फेवरेट डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों, मिथुन बॉलीवुड के उन महान हस्तियों में शामिल है जिन्होंने अपनी कमाल की अदाकारी के कारण फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल किया। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के ही अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड पर अपनी जगह बनाई। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का

सिनेमा जगत का जो सफर है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मिथुन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोलकाता से निकलकर पुणे आए। यहाँ पर उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। एक्टिंग के गुण सीखने के बाद डांसिंग क्वीन हेलेन के साथ बतौर असिस्टेंट बनकर उनके साथ उन्होंने काम भी किया। इसी दौरान मिथुन को दो अनजाने में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन थे और इस फिल्म में मिथुन दा को केवल 2 मिनट का ही रोल मिला। इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि साल 1976 में आई फिल्म मृग्या ने तो उसकी यानी कि उनकी किस्मत ही बदल दी थी। दोस्तों, डेब्यू फिल्म मृग्या के लिए मिथुन को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 90 के दशक में मिथुन दा के लिए ये दशक उनके लिए बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ रहा। साल 1993 से 1988 तक मिथुन लगभग 33 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन ये सभी 33 फिल्में फ्लॉप रही। ऐसे में कोई और होता तो शायद अपनी हार मान लेता, लेकिन मिथुन दा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो नहीं देखा और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में शाइन की, जिसमें सुरक्षा, हम 5, डिस्को डांसर, बॉक्सर, गुलामी, प्रेम प्रतिज्ञा, अग्निपथ, घर एक मंदिर, प्यार का मंदिर और प्यार झुकता नहीं जैसे फिल्में शामिल हैं। और जब हम मिथुन दा की हिट फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर होता है डिस्को डांसर का। जी हाँ दोस्तों, डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को 80 के दशक के प्रमुख डांसिंग स्टार्स में स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म की सफलता भारत तक सीमित नहीं रही, इसे सोवियत संघ सहित कई देशों में व्यापक लोकप्रियता मिली। सोवियत संघ में मिथुन के किरदार जिमी का नाम विशेष रूप से बहुत लोकप्रिय हुआ। डिस्को डांसर को ये जो फिल्म है दोस्तों, इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि कई देशों में मिथुन को उनके जिमी वाले किरदार से ही पहचाना जाने लगा। फिल्म ने मिथुन दा की लोकप्रियता को भारत से बाहर भी मजबूत बनाया। आप कह सकते हैं कि डिस्को डांसर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि 80 के दशक के भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत और डांस की एक ऐसी लहर थी जिसने मिथुन दा को एक अलग पहचान दिलाई। थिरकते कदमों ने जब पर्दे पर नई कहानी लिखी तो मिथुन दा के अंदाज ने डिस्को की दुनिया ही बदल दी थी। जब हम डिस्को डांसर की बात कर ही रहे हैं तो चलिए दोस्तों इस बार आनंद लेते हैं डिस्को डांसर फिल्म के इस गीत का।

श्रद्धा, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का, प्यार छुकता नहीं फिल्म से। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस दौरान आज हम बातें कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि आज के कलाकार के दौरान, मिथुन दा के बारे में। दोस्तों, प्यार झुकता नहीं ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही उस समय। इस फिल्म की खास बात यही है दोस्तों कि मिथुन दा को केवल एक्शन और डांसिंग स्टार्स के रूप में

पहले पहचाना जाता था। इस फिल्म के बाद उन्हें एक संवेदनशील और भावनात्मक रोमांटिक अभिनेता के रूप में भी पहचान मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और मिथुन पद्मिनी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। प्यार झुकता नहीं की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि इसमें प्रेम के साथ आत्मसम्मान, परिवार और रिश्तों की भावनाओं को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया। 1985 की इस फिल्म ने मिथुन दा के करियर में एक अलग तरह की रोमांटिक पहचान को और भी मजबूत बना दिया। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, इस बार तड़ीपार फिल्म से।

प्रदीप और फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बता दूं कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और बातों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: या उरिलोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तुलु गनि गग पकुन हल होग सोग दोकुम सो यूनाम प्रोफेसर्स हिद पीर पर्सपेक्टिव हिद असा असा स्टार कॉलेज इंस्टीट्यूशन होग हाल अगम अलीगोनिया पन्यागन को बहल होग लगा बोनिदो दो स्टार कॉलेज हिक होग पोस्टर प्रोजेक्ट बम बोनिदो दो नमम ला चोमम तिल अकिन कलम गो प्रोजेक्ट बोनिया अन्या को नमम रिव्यू जिजगन को बहल पुये बेपादो अरुणाचल प्रदेश ड्रग डी एडिक्शन सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तुलुंगला न्यू दिल्ली अलोग नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर एम्स तुलुंग लेकिन गो बोरिबुम बन मोरी नहर लगन ब डॉक्टर्स नर्सिंग ऑफिसर्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तुलुंग अल अपामाब ओपो इस्तुहुम दलिया तिल दल लेन बोम लेम कुमार दुकुब नशा मुक्त भारत अभियान उरिलो होग भे बोनिकिन अकिन दल हो पगो हो तमसिर होनगन को बाहल होग दोकुम मुबुले ट्रेनिंग बोन सम्पेज ओम गोब निगल नहर लगन हो पासीघाट होग नामसाई हो निग अगते कुन हल पुये बेपादो इंडिया आर्मी उरुलोग तू जाट बटालियन मुल्तान ग अलीले अनिग माउंटेनियर टीम तुलुंग केनल पोल आल हो नॉर्थ सिक्किम ग 6889 मीटर्स आओ हो माउंट कांगशेंग याओ पुतुंगम हेलिन गन को बहल हो गए बुले अगस्त पोल लोली ले लोहकन आल हो गए इस सियांग डिस्ट्रिक्ट रायांग हो गए अरब न सिक्किम हानम गो अलिन पकुन हल हो गए बुले सोल ग इतु से निलिन नम सि हबाल ओकम टीम ग मुजी अतोर हो गए यंतिन मुतिन नम नितुंग कल पुये बे पाजी दो इंडिया मेन्स क्रिकेट ग सोका मीन्स को हो इंडिया टीम ग थर्ड टी ट्वेंटी मैच ग सोख हो अफगानिस्तान गम 127 रन हो ग लियोया लाइल मैच ओम गो सोख हो ग 3.0 ग पॉइंट नाच सोया गन को बहल सो सोख सो टीम इंडिया ग बेटिंग गम जीचो जील बने 20 ओवर हो 7 विकेट दो 221 रन मकनुम हल हो ग हम सोरे कलम ने अफगानिस्तान ग मुली टीम गम 14.1 ओवर हो 94 रन आरो ग मुते पेल मुली ग आउट याकनुम हल पुहे बेपादो ईटानगर मेटेरोलॉजिकल सेंटर होग पुगदग गोलिन नबे पागुम अरुणाचल ग इस कामिंग पपुम पारे अंजाव होग तिरा डिस्ट्रिक्ट खदम येलो अलर्ट ब दग गोलिन जिल दोगुम तलेम ब ब्योले निदो इस हुआ किन दो होग मुलिंगम हेंग काग बदल दो न्यात का हल पुये गोतम तम नि जग नकुआ हल पुये बे पाद सिम गलि से पुये हतकु तन बहुदे आकाशवाणी के अर्न एफएम
1: मंडी तागप से आगम गो मुल आकाशवाणी ईटानगर इरकुम लोग सो पुसा मलिंजिदन मुलु नि मुलु तोलु गा भबने नियम नेगा को अन्योम अक्षिर गा ब एच आई वी ला एड्स ग पागो समनिंग चेंदो एच आई वी एड्स अलमान ब एच हेल हब जतल सो एच चिन बो सम एच चिनम सम नुले बोस दुब्री मा पान म सो एच सी एम यो कम चिदा पा हेल सो निंग मिलार सितान हेल दो मादने नुने सम आल जर चेल दो दुब्री पा सम चेल दो

थी मैं एक बार फिर से आप सभी का आरुण एफएम प्रसारण सभा में बताना चाहेंगे आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे एक विशेष श्रृंखला जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा पर।

0: आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया है, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
2: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में CEO बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड

0: तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार आई गॉट कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक आईगॉट पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आईगॉट प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
2: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने एक ही, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं, तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाब दी या ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर, सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
2: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
0: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण

0: के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
2: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में है, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं। उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 कॉलेजी के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने, देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हुआ है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच

0: में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
1: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक आस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रीवेशन में है
0: जी,
1: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
0: जी,
1: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है।
0: जी जी,
1: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही है या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
0: बिल्कुल,
1: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां, दिक्कत देखते थे और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलो। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, उनकी भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया, और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था। और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, तो हर एमएलए को, हर एमपी को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो इनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
0: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट आया, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इम्प्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
0: बिल्कुल। तो ये जो नजरिया है, मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
1: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूँ, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
0: जी।
1: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
0: नहीं
1: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में, मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
0: जी, जी।
1: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
0: बिल्कुल।
1: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
0: जी।
1: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में, वो आपने जो पूछा, तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
0: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है, और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले. तो लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है. वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका, और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करते. तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक. तो हम लोग लगे बहुत, और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया, क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था. तो जब ईपीएफओ के पास गए, उन्होंने डिजिटल तो किया, पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे. पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े, और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया. किसी देश ने इतना नहीं, और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है. और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ, पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए. और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया. तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए. और ये बहुत मेरे विचार से, जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव.
0: जी बिल्कुल सही कहा. और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है. अब जैसे नीति आयोग में भी बात है, तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है. तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में, उसे आप,
1: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए. तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है, इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है. तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. यूर, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है. ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी. तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर, कि आपको रिपोर्ट बना के देना. तो उस समय मुझे ध्यान में है, जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा. मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है. पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है. तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना, कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट. ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है.
0: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है, तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना, और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी.
2: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था. ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे, और वो ना चाइना के साथ बैठते थे ना रशिया के साथ बैठते थे. और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो. तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाए. तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की, हर स्टेट में गए. हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ. वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया. उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए, तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा
0: जी.
2: और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया. और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई. ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था. ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे. भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की. तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप, और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए।

0: और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं, वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
2: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
2: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी GDP बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे, और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक
1: है। बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पेशल सीरीज ऑन कम्प्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। आइए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश की ओर।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: जी थैंक यू सो मच, हम भी आपका स्वागत करते हैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन में प्रेम सिंह सिसोदिया द्वारा।
2: जी मुझे उज्जैन में स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए आप कैसे हो?
3: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कैसे हो?
2: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और आपसे बात हो रही है मुझे बहुत ही खुशी हो रही है।
3: जी
2: जी
3: अभी हमारे बात हुई थी लोकेंद्र वर्मा हमारे दोस्त है उज्जैन वाले से।
2: जी
3: तो हमने उनसे पूछा था कि आज रिकॉर्डिंग होगी क्या ईटानगर की, तो उन्होंने कहा कि 100% होगी और सर ही आएंगे आज।
2: जी जी जी 100% होगी और हो ही रहा है और मैं आपकी सेवा में आया हुआ हूँ। जी
3: जी और कैसा मौसम है आपके यहाँ?
2: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है।
3: अरे सर हमारे यहाँ इस साल बहुत कम बारिश हुई है और हमने सोयाबीन की फसल लगा रखी है।
2: अच्छा जी।
3: हाँ जी दो महीने की फसल हो गई, सोयाबीन की फसल पक भी गई है। बट है ना थोड़ा सा अगर पानी और ज्यादा गिरता है तो अगली फसल के लिए हमें काफी फायदा होता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा
3: जी। लेकिन फिर भी अगर कम बरसात होती है ना तो फिर भी कम पानी वाली फसल सभी किसान लगाते हैं यहाँ पर।
2: अच्छा अच्छा कम पानी वाले फसल कौन से होते हैं?
3: कम पानी वाली फसल सरसों होती है, चना होती है, मसूर होती है, जो दलहन
2: अच्छा,
3: में आती है ना।
2: अच्छा, अच्छा,
3: उसके लिए हाँ जी कम पानी लगता है।
2: ओके जी जी जी।
3: जैसे कि गेहूं और लहसुन और मटर जो लगाते हैं ना इसके लिए थोड़ी पानी की ज्यादा व्यवस्था चाहिए, बट इनका जो भाव और उत्पादन भी काफी अच्छा होता है।
2: अच्छा जी जी जी
3: जी
2: जी। तो खेती बाड़ी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्रेम सिंह जी आपने। और आज तो विश्वकर्मा पूजा है।
3: बताना चाहेंगे सर आपको कि हम बचपन से अपने पापा के साथ में खेतों में काम करते रहे, साथ में पढ़ाई भी करी हमने।
2: अच्छा जी।
3: और हाँ जी और उसके साथ में फिर 2019 से मैं फिर भजन गायकी में गया और एक भजन गायक भी हूँ।
2: अच्छा क्या बात है। तो आज तो विश्वकर्मा पूजा है तो इसी पर कुछ भजन हो जाए।
3: हाँ जी विश्वकर्मा पूजा भी है और साथ में बताना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश में जो ज्यादातर गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है, घर में गणेश जी की स्थापना की हुई है।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: और हाँ जी और साथ में सभी लोगों ने अपने कॉलोनियों में भी की है और मंदिरों पर भी मतलब गणेश जी स्थापना की हुई है।
2: अच्छा अच्छा जी जी।
3: हाँ तो मैं एक छोटी सी लाइन भजन की सुना दूँ आपको।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: अरे तू जी सर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया गाते हैं आप तो।
0: हाँ जी,
1: जी
0: बिल्कुल। 2019 से अभी तक हम गा रहे हैं। हमारे 8 लोगों का ग्रुप है
1: हाँ जी, आपने एक
0: उसमें।
1: बार बताया था। जी जी
0: हाँ जी, 4 लोग हारमोनियम बजाते हैं, 2 ढोलक और 1-2 तबला बजाते हैं।
1: जी, कभी मौका मिले तो जरूर आपका प्रोग्राम देखने आएंगे, वो भी
0: जी
1: ग्रुप
0: बिल्कुल,
1: ग्रुप
0: आपका
1: के साथ।
0: स्वागत रहेगा और हम तो हमारा बहुत अहोभाग्य समझेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में कभी शामिल हो पाए।
1: जी जरूर कोशिश करेंगे। तो आज कहिए
0: जी
1: प्रेम सिंह जी, कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। अलका याग्निक की आवाज में सुनाना आप।
1: अच्छा, अलका याग्निक, ओके हाँ जी जरूर
0: जी
1: सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अविनाश, संगीता जी, सुनील जा, रमेश टेलर, हाँ और एक और दोस्त है हमारे रानू गुप्ता देवास से। इन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा और स्पेशली आपके लिए भी।
1: जी, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सुनते हैं आपके पसंद का।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते सर जी।
0: जी नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: सर जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी सतीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप? आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: जी सर, सबसे पहले सर मेरी ओर से आकाशवाणी ईटानगर को और आपको सर गणेश चतुर्थी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और दूसरी शुभकामनाएं सर जी ये है कि आपको हिंदी दिवस के अवसर पर जो सम्मान मिला उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। और हमको जानकारी प्राप्त हुई हमारे लोकेंद्र वर्मा जी के माध्यम से सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और लोकेंद्र जी को भी हमारी ओर से धन्यवाद कह दीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल सर जी, और बहुत ही अच्छा लगा सर जी कि हमारी आकाशवाणी में ईटानगर पे आपको सम्मान मिले, इसे सर हमें अध्यक्ष से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्यार देते रहे हमें।
1: जी जी बिल्कुल सर जी।
0: और कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप
1: आज सर जी? मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम रहेगा सूरज, मोहम्मद रफी जी की आवाज में है और गीत बोल रहेंगे सर जी बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा आया है।
0: ओहो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। जी मौसम
1: सर जी, सर पुराने गीत की बात ही निराली होती है सर।
0: बात तो सही है, मौसम के वजह से आपने चुना ये गाना या फिर ऐसे ही?
1: जी नहीं सर, मौसम के ऊपर से जो है सुना हूँ सर, बहुत ही अच्छा लगता है सर।
0: अच्छा जी जी जी, बात सही है। जी जी, और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर सबसे पहले डेडिकेट आप रहेंगे।
0: थैंक यू। हाँ जी,
1: और हमारे सम्मानीय मित्र हैं सर जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, सत्येंद्र चंसूलिया जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, राजू यादव जी हैं, और हमारे शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, और सर सुनने वाले सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो सतीश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर और प्रोग्राम का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला से। और आज आपके साथ साथ कार्यक्रम पेश कर रहे आरजे बोके बावरा सर जी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही
1: जी
0: बढ़िया
1: सर,
0: तरीके से आपने मेरी परिचय दिया मेरा।
1: जी जी कैसे हो?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, आप भी अपना परिचय दे दीजिए।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला से आपका छोटा आरजे बोल रहा हूँ।
0: जी पूरन सिंह वर्मा जी।
1: जी जी सर जी
0: जी आरजे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है पूरन सिंह जी, सब बराबर ही है। आप भी बढ़िया बोलते हैं।
1: नहीं तो आपके मुकाबले में छोटा आरजे में क्या, मैं तो ऐसे सोता रेडियो सोता हूँ ना, छोटा आरजे।
0: चलिए कोई बात नहीं। जी जी जी और सुनाइए कैसे हो आप?
1: बस सर बढ़िया हूँ। और आप सुनाओ कैसे हो, वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, गणेश पूजा कैसी चल रही है?
0: जी हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही हो रही है। जी
1: और
0: जी जी
1: पूजा
0: और
1: पाठ
0: जी
1: कैसे हो
0: पूजा
1: रहा है
0: पूजा बढ़िया चल रहा है। जी
1: आप?
0: तो पूरन सिंह जी आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं।
1: जी मैं आज सुनूंगा, क्योंकि हमेशा मैं मेरी पसंद सुनता हूँ, तो मैं
0: अच्छा
1: आज चाहूंगा कि आज आपकी पसंद हो।
0: अच्छा जी आप मेरी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं।
1: जी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे बोके बावड़ा सर जी की पसंद कैसी होती है।
0: जी मैं भी ज्यादातर तो पुराने गाने ही सुनता हूँ, पुराने
1: जी
0: गाने ज्यादा पसंद है।
1: जो भी आपको पसंद हो वो भेज
0: अच्छा
1: दीजिए।
0: अच्छा जी मैं कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ आपको मेरी पसंद जरूर पसंद आए।
1: जी जी
0: जी और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी सबसे पहले तो आप है
0: जी धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, अभिनाथ जी है, शिवालवार है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति, रमेश पात्र, अमल बिमल, और वो कविता मैडम को भी सुनाना चाहता हूँ, नूरा मैडम को भी सुनाना चाहता हूँ, कभी उनको भी कार्यक्रम में उनको भी
0: जी
1: नंबर आए तो हम दुआ करेंगे सर।
0: जी जी जरूर आएंगी वो भी
1: जी हम
0: अभी।
1: हमारी इच्छा है सर बात करने की, बहुत दिन हो
0: अच्छा
1: गए
0: अच्छा
1: सर।
0: जी जी जरूर लाएंगे आपके लिए, हम जरूर लेके आएंगे नूरा मैम को।
1: और
0: जी
1: देपाली देपाली भी है महाराष्ट्र से और सुवाती है, और जितने भी कॉलर लाइव आपसे बात करेंगे आगे लाइन में खड़े उनके लिए।
0: ओके तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते हैं मेरे पसंद का गाना आपके लिए।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: सर्वे तो बहुत बढ़िया हो, और आपसे बात कर ईटानगर में फोन लगा तो और भी बढ़िया हो गई।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी तनुश्री?
1: सर हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी है अभी?
1: जी
0: ओके
1: सर।
0: जी जी जी, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही हो रही है।
1: जी आपके यहाँ की बारिश थोड़ी सर हमारे यहाँ भेज दीजिए।
0: हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, जरूर भेज दूंगा मैं।
1: बहुत सर यहाँ मतलब हम गर्मी से बहुत परेशान है। हमारे यहाँ की कहा जाता है कि जब गणपति बप्पा बिठाए जाते हैं ना तब बारिश आती है, पर इस साल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
0: ओहो जी जी जी जी, तो आशा करता हूँ जल्दी बारिश हो आपको, ताकि आपको गर्मी से राहत मिले।
1: जी सर।
0: तो तनुश्री, आज कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहोगी?
1: सर आज मतलब 17 सितंबर सर मेरे क्लास में शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ ना, उसे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं।
0: अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
1: और आज थैंक यू सर, और ईटानगर में फोन लगा और सेलिब्रेट करने का मौका मिला तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है।
0: जी जी जी जी, जानकर हमें भी बहुत ही खुशी हो रही है। तो इसी खुशी के अवसर पर थोड़ा सा गुनगुना दे कोई भी गाना जो आप।
1: जी सर, फिल्म का नाम है संगीत, उसमें गाना है
0: ओके।
1: जो

0: जी, बहुत ही बढ़िया गाया है आपने जी, और
1: जी
0: हम
1: सर,
0: जी यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूती रहे
1: थैंक
0: जी।
1: यू सर। और
0: ओके
1: दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ
0: जी जी
1: सर।
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ जी,
1: पहले 100 डिजिट आपको रहेगा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मेरे सिर पापा है भगवान सिंह, परमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है, शिमला से गंगाधर सावनकर जी है, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी है, पुष्करना शर्मा जी है, पंचीराम शर्मा जी है, गोल्डी जी है, दीपाली जी है महाराष्ट्र से, स्वाति जी है महाराष्ट्र से, और आसाम से भाई अमल भट्टाचार्य और रमेश पात्रो और लाल सुंदर सभी श्रोताओं के लिए।
0: ओके, तो तनेश्वरी जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना,
1: ओके बाय।
0: बाय।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश। ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर जी। मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी भगवान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए कैसे हो आप?
1: बहुत बहुत दिनों से लगा रहा हूँ सर, बहुत प्रयास किया, आज मिला है करीबन डेढ़ महीने के बाद।
0: ओके जी जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना, तब बहुत ही बिजी रहता है लाइन।
1: जी जी सर
0: जी, और सुनाइए भगवान सिंह जी कैसे हो आप?
1: अच्छे हैं सर जी, मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, बरसात 4 दिनों से नहीं हो रही है।
0: अच्छा,
1: वहाँ की थोड़ी गर्मी है उमस वाली सर।
0: ओके जी जी जी, आशा करते हैं जल्दी बारिश हो। हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही हो रही है।
1: जी जी, आपके यहाँ तो होती है सर?
0: जी जी, पहाड़ी इलाका है ना।
1: पहाड़ी इलाका है और इलाका भी अच्छा है सर, सुंदर लगता होगा आपके यहाँ तो, पहाड़ में हरियाली होगी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चारों ओर हरियाली ही है।
1: जी
0: जी,
1: तो सर मैं आपको फिल्म का नाम बताता हूँ। फिल्म का नाम है इंसाफ, और गाने के बोले तुझे प्यार इतने किए जा रहा हूँ, तेरा नाम पल पल लिए जा रहा हूँ।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहिए?
1: नाम ले सकते हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरे अमल भस्मतारी, बिमल भस्मतारी, रमेश पात्रे, भाईकुन मुंडा जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, और हमारे मित्र पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, और लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, और सावनकर गंगाधर जी हैं।
0: ओके, इन साथियों के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
1: जी धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: हेलो जी, नमस्कार, सत
0: जी।
1: श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे
0: जी
1: राधे
0: जी राधे राधे
1: जी।
0: अनुपदा
1: बहुत अरे मेरा दोस्त से बातचीत हो रहा
0: जी
1: है ना,
0: जी जी बिल्कुल।

0: जी, हमारे यहाँ भी लगातार बारिश ही हो रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है।
1: जी जी जी
0: जी हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: आप आपके वहाँ के तो क्या बोले, एटमोस्फेयर
0: जी
1: क्लाइमेट बहुत अच्छी है
0: जी जी जी हाँ
1: और
0: जी
1: हमारे यहाँ पे थोड़ा अच्छी हो गया। और आज इसी प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ
0: बिल्कुल जी
1: और गाने का बोल ऐसे है, ये किशोर कुमार जी का आवाजों में,
0: ओके
1: फिल्म का नाम है सौतन और गाने का बोले, सौतन का एक गाने है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय से बुलाया है, ऐसे करके
0: वाह वाह
1: गाने का
0: वाह, बहुत ही बढ़िया गाना है जी,
1: बढ़िया गाना, बहुत
0: और बहुत ही
1: पुराने गाने
0: बढ़िया से आपने गाया भी है अनुपदा
1: क्या बात।
0: जी, अच्छा लगता
1: और
0: है जी।
1: कुछ हमारे दोस्त, कुछ दोस्तों को मैं याद करता
0: जी जी
1: हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे छोटे भाई अविनाश जी है और प्रेम जी चक्रवर्ती है, लुकेन्द्र वर्मा जी, अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, और कश्मीर से हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है जिसका नाम है पुरुषोत्तम कुमार जी है, और है वो हमारे सहधर्मिनी सुतपा भट्टाचार्य जी के लिए, और हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब जिससे मेरा बातचीत हो रहा है अभी, उसका नाम है बके बागरा जी के लिए, और है हमारे उसका नाम कविता जी और नूरी मैडम के लिए। तो मेरे दोस्त चलिए बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ, बहरहाल आप अच्छे रहिए और स्वस्थ रहिए, थैंक
0: जी,
1: यू।
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फरमाइए
1: जी नमस्कार, हेलो फरमाइश ईटानगर।
0: सर।
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी नमस्कार, हेलो फरमाइश ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: अमरजीत बात कर रहा हूँ सर।
1: जी अमरजीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: और सुनाइए कैसे हो आप?
0: मैं काफी अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
0: सर मैं बात कर रहा हूँ आपसे उत्तर प्रदेश इंडिया गेट कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपके वहाँ
0: और
1: मौसम कैसा है आज?
0: मौसम काफी अच्छा हो रहा है सर, आप
1: अच्छा
0: बताइए आपके तरफ का मौसम कैसा है?
1: जी, हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत ही
0: इस
1: बढ़िया
0: समय
1: मौसम।
0: एमपी से बात कर रहा हूँ मैं।
1: अच्छा जी।
0: जी
1: तो अमरजीत जी, आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: जी मैं गीत सुनना चाहूंगा बरसात की रात मूवी से, बादल करके सजन नहीं आया मिलन वाली रात।
1: अच्छा जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जैसे लोकेंद्र वर्मा है उज्जैन से, और भगवान सिंह परमार जी, और बरेली से विमल ठाकुर जी हैं, मुरादाबाद से फरमान जी कसिए हैं, रामपुर से भाई बकर साहब हैं। प्यारा प्यारा सुनने वाला।
1: ओके, तो अमरजीत सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी गंगाधर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: मौसम कैसा है?
1: मौसम तो सर अभी उतरा चल रहा है, धूप मार रहा है फुल।
0: अच्छा, धूप फुल मार रहा है।
1: हाँ, ऐसी गर्मी हो रही है
0: जी
1: कि धूप काले से ज्यादा गर्मी हो रही है।
0: ओके जी जी जी, हमारे यहाँ तो बारिश ही हो रही है लगातार 2-3 दिन से।
1: अरे वाह साहब, आप तो बहुत खुश नसीब है। बारिश की मौसम जो गए साल देखे, आज इस साल देखने को नहीं मिला।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओ गए साल बढ़िया बारिश हुई थी वहाँ पे?
1: हाँ, गए साल बढ़िया हुआ।
0: अच्छा अच्छा।

0: बार तो
1: बारिश
0: सूखा।
1: सर कभी आ रहा है, छुटपुट छुटपुट बारिश होकर चल जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी
1: इससे बहुत से कुछ नुकसान है सर, बारिश नहीं हुआ तो
0: बात तो सही है,
1: किसानों को दिक्कत हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।
1: जो भी पक्षियों को पानी के लिए परेशानी हुई, चलो ठीक है सर, फिर भी आने का मौसम में पानी आने का बता दिया।
0: अच्छा जी जी
1: पानी गिरेगा सर,
0: ओके जी जी जी
1: ऊपर
0: जरूर।
1: वाला बिल्कुल बरसाएंगे सर
0: जी
1: पानी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। जी
1: जी सर,
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत सर आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज़ भी बहुत ही लाजवाब है, बढ़िया।
1: हाँ सर मैं है, मगर जैसा उद्घोषक को
0: जी
1: की आवाज रहती है, हम है तो सर श्रोता है सर हम।
0: जी जी जी जी नहीं, फिर भी आपका आवाज़ बहुत
1: पूछ
0: ही
1: रहे थे
0: बढ़िया।
1: सर जैसे हमारे लोकेंद्र वर्मा जैसे,
0: जी
1: उनकी भी प्यारी आवाज है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने जी।
1: हाँ, उन्होंने आपकी इस ग्रुप में आलो फरमाइश ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाले सर, पोस्टर डाले
0: अच्छा
1: ईटानगर के फरमाइशी करते हैं उन्होंने।
0: ओके जी जी जी
1: हाँ, कि आपकी फोटो भी डाली सर, बहुत बढ़िया फोटो।
0: अच्छा जी, लोकेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी
1: जी सर,
0: तो गंगाधर जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सावन को आने दो
0: ओके
1: फिल्म का नाम है, और सावन को आने दो टाइटल सॉन्ग सुनना है सर।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग ही आप सुनना चाहते हैं जी।
1: तुझे
0: जरूर
1: गीतों में डालूंगा, सावन को आने दो,
0: वाह
1: ये
0: वाह
1: गीत सुना
0: वाह
1: है सर।
0: जी, जरूर
1: अभी
0: सुनाएंगे
1: हमारे पास गणेश का उत्सव चल रहा है सर।
0: जी हाँ जी।
1: बहुत बढ़िया, देशभक्ति पर, किसानों पर ऐसे देखावर बनाया सर,
0: अच्छा ओके जी जी
1: सुंदर
0: जी
1: सुंदर बनाया सर।
0: ओके, पंडाल बढ़िया से सजाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सजाया सर।
0: ओके जी
1: सर कुछ मित्रों का नाम लेना चाहता
0: जी
1: हूँ,
0: बिल्कुल हाँ जी
1: हमारे आरओ आकाशवाणी ग्रुप के गौतम जी राय बोले रहे, योगेश जांगड़े जी, भगवान सिंह जी, तुकाराम जाधव जी, सुनील झा, दिलीप पाउजा, हमारे उदयलाल टेलर जी, केसर सिंह राजपूत जी, राजेंद्र गंगवार जी और तनुश्री सातारा, सभी दोस्तों को सुना है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी
0: ओके
1: सुनिए सर गाना।
0: जी जरूर सुनेंगे, तो कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो, फरमाइश
1: जी। सर जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार
1: जी। सर, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी राम बाबू शर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए, कैसे हो आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया हूँ। बस मुझे मालूम चल रहा कि ईटानगर पे आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग चल रही है।
0: अच्छा, आप पहली बार कॉल कर रहे हैं क्या राम बाबू जी?
1: जी सर बिल्कुल, मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हुई
0: जी, और आशा करते हैं आगे भी आप जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: जी सर बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते रहेंगे।
0: जी जी जी, तो राम बाबू जी कुछ बताइए अपने बारे में।

0: हमारे श्रोताओं को?
1: जी सर, मैं तो किसानी करता हूँ।
0: अच्छा जी,
1: तो सोयाबीन और धान लगी हुई है, अभी बारिश तो नहीं हो रही है और मौसम साफ है, बस आने ही वाली है फसल सोयाबीन की।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: जी सर, जी सर 15 एक रोज में फसल आ जाएगी सोयाबीन की, फिर 1 महीने के बाद में धान किया जाएगी।
0: अच्छा अच्छा, तो सोयाबीन के लिए तो पानी जरूरी होती है।
1: जी सर, अब तो आने वाली है तो एक आध पानी और गिर जाए तो अच्छा रहेगा।
0: अच्छा अच्छा, फसल अच्छा उगेगा।
1: हाँ, बस पकने वाली है, बस अब तो आने ही वाली है।
0: जी जी जी, तो उम्मीद करते हैं जल्दी बारिश हो ताकि आपके फसल अच्छे हो।
1: जी जी सर।
0: तो राम बाबू जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: जी सर, आज मुझे सुनवा दीजिए, माफिया फिल्म में है, दिल ये पागल दिल मेरा, हर पल तुझे आवाज दें सर।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे?
1: जी सर बिल्कुल, मेरे मित्र ने बताया मुझे, केसरी सिंह राजपूत जी ने, जी सर उनके लिए रहेगा, गजराज सिंह लोधी जी हैं और भगवान सिंह परमार जी हैं। जी सर, आशुतोष देवनाथ जी, संगीता देवनाथ जी, अविनाश जी सर आपके लिए रहेगा।
0: ओके, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम बाबू जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना माफिया फिल्म।
1: जी सर नमस्कार।
0: ओके नमस्कार। हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार।
0: हेलो फरमाइश, ईटानगर।
2: दिनेश शर्मा कैसे?
0: दिनेश शर्मा कॉल करा करने बहुत बहुत धन्यवाद। कैन को ऐसे अपनी?
2: भाला
0: मयो खूब भाल। कोई ऐसे घर पर ना ड्यूटी?
2: ड्यूटी।
0: अच्छा अच्छा, ड्यूटी मारि आहिले न राति पर?
2: ड्यूटी मारि आहिले। কাইলে ভাওনা আছে বাস্তনত।
0: ও হে দিনা কইছিলে আপনি? হ্যাঁ।
2: কালে বিশ্বকর্মা আছে, বিশ্বকর্মা আছে।
0: হ্যাঁ হ্যাঁ।
2: ও কালে পড়িছে।
0: ওকে ওকে, ভাওনা কালি হবো ন? ভাওনা মানে কি? কিহর বিষয় হব ভাওনা?
2: ভাওনা মৎস্য পতা পাতিছে, ভাওনা পাতিছে।
0: আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। আপনি ভাওনা করে জানো না এনে চাবলে যায়?
2: আগতে লৈছো, এবার লওয়া নাই
0: বাৰু। ও ওকে ওকে, যেটা আপনি হক করব তেতিয়া আমাক খবর করব, আমি আহিম চাবলে। তো দিনেশ দা, আজি কোনটো ফিল্মৰ গানা শুনিব? ৰাজা হিন্দুস্তানী পৰদেশী পৰদেশী। ওকে, আৰু কাকা শুনাব?
2: মই ভাইকল মুণ্ডা, হৰদৰা, নীলপল দৰা, কল্পনা দৰা, পুতলি দৰা, পনদী দত্তা, মাধৱী নাথ, লগতে আপোনাক শুনাবলৈ আপোনাক সকলো কুমকতা লৈ।
0: ওকে, তো দিনেশ দা অসমবাসী। ওকে দিনেশ দা, কল কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুনো আপোনাৰ পচন্দিদা গান।
2: ধন্যবাদ।
0: ওকে ধন্যবাদ।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पाश्चात्य संगीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोता, पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बता दूं आपको कि पहला गीत का आप आनंद ले रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में शोर फिल्म से।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

निशी यूथ एसोसिएशन आन्या मनाने जा रहा है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2026 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में। श्री जामरू रोजा प्रेसिडेंट आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और श्री ताई राजन जनरल सेक्रेटरी आन्या कम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सभी निशी भाई बहनों को इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सादर आमंत्रित करते हैं। आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, निशी टूरिज्म कॉन्क्लेव और लिटरेरी कंपटीशन जैसे आकर्षक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो तैयार हो जाइए आन्या के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।

0: श्रोता तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजांग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर। धन्यवाद।
1: करंट अफेयर्स, दिस इज आकाशवाणी। इन द वीकली प्रोग्राम Current Affairs. Now we bring you a discussion on free trade agreements and India's growth story. The participants are Professor Sanjay Bhardwaj, International Affairs expert, and Anil Padmanabhan, Economic Analyst. Moderator is Manas Pratim Bhuyan, Journalist.
2: Professor Sanjay Bhardwaj and Mr. Anil Padmanabhan, thank you so much for joining us on a discussion on free trade agreements and India's growth story. We have seen finalization of at least

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी NTA की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephonic call from President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in areas of energy, defense, technology, investment and healthcare. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of the Crown Prince in the BRICS summit and UAE's cooperation in partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said that India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said that India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation manufacturer Hindustan Aeronautics Limited, HAL, today handed over light combat aircraft Tejas final operational clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. Defence Minister Rajnath Singh and Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu attended the handing over ceremony. HAL handed over two light combat aircraft, Tejas final operational clearance twin-seater trainer aircraft to the IAF. It also handed over four Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. HAL also delivered the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. The Defence Minister named the aircraft Ankur. The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rejinagar on the 6th of next month under new identities. The group led by Arup Roy has been allotted the name Democratic Trinamool Congress and the envelope symbol. The faction led by Mamata Banerjee has been allotted the name Mamata All India Trinamool Congress and the football player symbol. In its order, the poll body said that both groups would be treated as recognized political parties in West Bengal, Meghalaya and Tripura. The government has relaxed the sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. The relaxation is subject to the condition that the quantity of stock held beyond the existing 15 days limit shall be sourced exclusively from sugar imported under advance authorization scheme and tariff rate quota. And at the Asian Games, the Indian women's cricket team entered the semi-finals after comfortably defeating host Japan by 8 wickets in Nissan today. In the quarter-final match, electing to field first, India bowled out Japan for a paltry 57 in 19.5 overs. In reply, India overhauled the target, posting 59 for 2 in just 5 overs. Shefali Verma led the chase with an unbeaten 40 off 15 balls. And that's the end of this news bulletin.
4: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल।

0: सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यह संदेश बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा किया गया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि यह संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि 2026 की पहली तिमाही में वार्षिक आधार पर भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जबकि 2025 में यह 7.3% थी। यह मजबूत निजी खपत, निवेश, बुनियादी ढांचे पर सरकार के लगातार खर्च, सेवा क्षेत्र की मजबूती और निजी निवेश में तेजी के कारण संभव हुआ है। बांग्लादेश ने क्षेत्रीय विकास को रफ्तार देने के लिए सार्क संगठन को फिर से सक्रिय करने की मुहिम तेज कर दी है। ढाका में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के दौरे के दौरान बांग्लादेश ने इस पर भूटान से मजबूत समर्थन मांगा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना वाले स्थान पर बचाव कार्य चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने मौके से भागने से पहले चेक पोस्ट को निशाना बनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेज के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र से 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
2: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
3: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
4: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: केरलम राज्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और खाड़ी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केरलम पर्यटन ने संयुक्त अरब अमीरात के पर्यटन उद्योग और हितधारकों के

साथ दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट में भाग लिया। अरेबियन ट्रैवल मार्केट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक प्रमुख वार्षिक व्यापार प्रदर्शनी है, जो 14 से 17 सितंबर तक दुबई में आयोजित की गई। यह आयोजन इनबाउंड और आउटबाउंड पर्यटन पेशेवरों के लिए एक वैश्विक व्यापार मंच के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने पड़ोसी देश में हाल ही में आई बाढ़ में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते से वस्तुओं और सेवा के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते को जल्द पूरा करने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज मॉस्को में रूस के रक्षा उपमंत्री जनरल यूनुस बेक येवोकुराव से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत रूस के दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सेना ने बैठक के बाद बताया कि संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और सैन्य सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कल से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।